0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨਵੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनू राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनू राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

अयोध्या से आई बारात की चहल पहल जनकपुर में चहुं ओर दिखाई दे रही है। हेमंत ऋतु, अगहन का सुहावना महीना, ग्रह तिथि, नक्षत्र योग तथा शुभ दिन सभी अनुकूल होकर जब एकत्र हुए तो स्वयं ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बनाकर मुनिवर नारद के हाथों से राजा जनक के पास भिजवाया। शुभ मुहूर्त आया देख राजा जनक की नगरी में मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंज उठी।

0: देर रात 11:10 ते तुसी साडे डीटीएच चैनल तो सुनोगे लाइव फोन इन फरमाइशी गीतां दा प्रोग्राम सौगात। साडा इह प्रोग्राम देर रात 11:10 तो लैके देर रात 1 तक प्रसारित किया जाएगा। परिचय तहत ये साडे अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामों का वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 6:55 हो रहे ने। कुछ पलां दे इंतजार तो बाद तुसी संस्कृत विच समाचार सुनोगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति। कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पूताः आईएनएस दुनागिरिः, आईएनएस संशोधकः, आईएनएस अग्रयश्च भारतीय नौसेनायै समर्पिताः।
2: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: तेन उक्तं यत् एतेषां पोतानां निर्माणे 200+ सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योगदानम् अकुर्वन्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सांप्रतिक वर्षस्य अंतर्राष्ट्रीय योग कृतज्ञतां व्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्य कल्याणयोः समान लक्ष्ये संयोजयति। प्रधानमंत्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः कुनो राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। सा प्रोजेक्ट चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षा अनकर्मचारिभिः स्थानीय जनैश्च सह पञ्चशताधिकाः व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी 26+ पुनर्परीक्षा सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसम्पन्ना। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु 44+5,000 परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्। दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेष व्यवस्थाः अपि कृताः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन 12 उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामः क्रमशः प्रकाशितः। मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनानामः घोषिताः सन्ति, अवशिष्ट परिणामः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इति उक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणित सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः।

0: तमिलनाडु राज्यस्य पेरिया पालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवण घटनायां सप्त जनाः मृताः, सप्तत्यधिकाः श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितं आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7 बज चुके ने, हुण तक दीआं मुख खबरां सुणो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता विच स्वदेशी तौर ते बने समुद्री फौज दे 3 जहाज राष्ट्र नूं समर्पित कीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जबलपुर विच राणी दुर्गावती यूनिवर्सिटी दे 36वें कॉन्वोकेशन विच शिरकत की। राष्ट्रपति ने आदिवासी समूहां, पछड़े वर्गां ते महिलावां दे शक्तिकरण लई सिक्ख्या दी महत्ता ते जोर दिता। केंद्रीय वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ते यूरोपीयन यूनियन विचकार मुक्त व्यापार समझौते ते इस साल दसंबर तक दस्तखत होण दी उम्मीद है। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मौके पाकिस्तान स्थित इतिहासिक गुरधामा के दर्शनों 290 श्रद्धालुओं का जत्था कल पाकिस्तान लई रवाना होया। पंजाब सरकार वालों वित्तीय साल 2025-26 दौरान बुजुर्गों लई चलाईयां गईयां वख-वख भलाई गतिविधियों विच बुजुर्गों की कुल हिस्सेदारी का आंकड़ा 111,000 तों वध रिकॉर्ड किया गया। पंजाब सरकार वालों 24 जून नूं मोहाली स्थित MET यूनिवर्सिटी विखे NRI मिलनी 2026 का आयोजन किया जा रहा है। अमेरिका ते ईरान विचकार अंतरिम समझौते नूं मजबूत करन ते पछमी एशिया टकराव नूं खत्म करन दे उद्देश नाल स्विट्जरलैंड दे बर्गने स्टॉक विच गलबात शुरू हो गई है। हॉकी विच भारत ने ऑकलैंड विच न्यूजीलैंड नूं 2-0 नाल हरा के अपना दूजा FIH महिला नेशनस कप खिताब जीत लिया है। क्रिकेट विच भारत ए ने दांबूला विच 3 देशां दी लड़ी दे फाइनल मुकाबले विच श्रीलंका ए नूं 66 दौड़ां नाल हरा दिता है। ये सन हुण तक दीआं मुख खबरां। अगलियां मुख खबरां तुसीं सुणोगे सवेरे 9 बजे ते आकाशवाणी जलंधर ते। हुण प्रोग्राम सोहनी सवेर।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज़ ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसीं सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक।

0: समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
2: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की

0: संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनैनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ MIFF 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
4: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले JD वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे

0: भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
2: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
3: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
4: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
5: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2-दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host two-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail.

0: को जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
1: इस मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरां ने भी इस बारे जिक्र करदे हां कहा,
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना और समस्त मानवता के कल्याण का आधार स्तंभ है। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे पंजाब विच मनाया गया। योग सिर्फ एक कसरत नहीं, सगों शरीर, मन अते आत्मा नूं संतुलित रखण दा एक प्रभावशाली साधन है। इस मौके लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी विखे विशेष समागम दा आयोजन किया गया। समारोह दे मुख मेहमान भाजपा दे कौमी प्रधान श्री नितिन नवीन जी सन। इस मौके उन्हां संबोधन करदिआं कहा कि योग इक सेहतमंद, तंदुरुस्त अते संतुलित जीवन दी नींह है।
3: पंजाब के लोगों को निश्चित रूप से आज उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाकर वहाँ के युवा साथियों को, एलपीयू के अपने सभी संस्था के लोगों के साथ मनाया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है पंजाब अपने भविष्य के लिए, पंजाब जिस प्रकार से अपने संघर्ष, अपने परिश्रम, अपनी मेहनत के लिए जाना जाता है, और मैं मानता हूँ कि पंजाब के लोगों ने हमेशा संघर्ष करके अपना मुकाम पाया है, तो निश्चित रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर ड्रग्स को नो कहेंगे और ड्रग्स को समाप्त करके समाज और युवा साथियों के बीच में निश्चित रूप से उज्ज्वल पंजाब, जहां पर विकसित भारत का सपना है, वहीं विकसित पंजाब बने, इस दिशा में हम आगे बढ़े।
1: इस मौके आकाशवाणी नाल अपने विचार सांझे करते हुए,
4: मैं डॉक्टर रविंदरजीत कौर, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, आज असि इत्थे जिला आयुर्वेदिक अते यूनानी अफसर जलंधर जी की रहनुमाई हेठ ईएसआई कॉम्पलैक्स विच 12वां इंटरनेशनल योगा डे सैलीब्रेट किया है, जिस दे विच बहुत सारे डिग्नेटरीज, हलका इंचार्ज जिहड़े हैगे नितिन कोहली जी, ओ आए एम एस मैम सीगे, और बहुत सारे जिहड़ी आम पब्लिक है उन्होंने योगा किया है। और मैं गुजारिश करूँगी कि सारे ही लोगों नू अपने स्वस्थ तन मन अते धन दे लई अध्यात्म लई जिहड़ा है योग करना चाहिदा है, और योग करो और रोज़ करो। एक दो दिन की गल नहीं होनी चाहिए है, क्योंकि एक दो दिन नाल कोई फ्रूटफुल जिहड़ा एफर्ट सानू नहीं मिलते हैगे है। तो रोज़ नू योग जिहड़ा हैगा वो अपनी जिंदगी का पार्ट बनाओ, रोज़ करो, योग करो, स्वस्थ रहो, स्वस्थ तन मन अते अध्यात्म दा जिहड़ा रस्ता है योग दे राही जांदा है। सो सारियां नू बहुत बहुत मुबारकां इंटरनेशनल योगा डे दियां, और एज द थीम इज योगा फॉर हेल्दी एजिंग, सो रोज़ असी एज ही कर रहे हैं, सारा वर्ग, हर तो बच्चा तो लेके बुजुर्गों तक सारियां नू योग करना चाहिए है, रोज़ करना चाहिए है।
5: मैं नरेश सेठी, जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति। मैं अज 12वें इंटरनेशनल योग दिवस से बहुत बहुत सारे बधाई दिना वै, और सारे नू अपील करदा वै पूरे देशवासियों नू कि वह सवेरे उठ के रोज़ योग करन और अपनी सेहत नू ठीक रखन। सब तो पहला मैं अपनी उदाहरण दिना वै कि मेरा भार 120 किलो सीगा और मैं 1.5 साल के विच अपना भार 22 किलो घटा लिया वै। सिर्फ मैं कपालभाती ते सूर्य नमस्कार करके ये मैं सारा अपना भार घटा लिया वै। मैं सारिआं नूं अपील करूँगा, जिस तरह के मैं हुणे ही सारे योग प्रोटोकॉल के अंडर मैं सारे 32 आसन और प्राणायाम कराए है, हुण मैं सारिआं नूं ये अपील करदा वै कि साडे पूरे जलंधर जिले में 50 योग कक्षावां लग रही वै, तुसी किसी भी योग कक्षा दे विच आ के इन्हों का लाभ लै सकते हो। इन्हों का कोई पैसा नहीं लेंदे, आपां सब कुछ फ्री है। जे तुसी अपने इलाके दे विच कोई योग कक्षा लगवाना चाहते हो, योग शिविर लगवाना चाहते हो, असी वह भी बिल्कुल फ्री करते हैं। असी सारे अपने योग मैट भी नाल लैके आने, दरिया भी नाल लैके आने, स्पीकर भी असं अपना लैके आने, बैनर भी असं अपने लगाने हैं। असी बिल्कुल सारा फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, किसी को कोई पैसा नहीं लेंदे। टांडा रोड से साडा हैड ऑफिस है APJ स्कूल के नाल पतंजलि योग आश्रम, उत्थे तुसी कभी भी आके मैनू मिल सकते हो। मेरा नाम नरेश सेठी है। तुसी कभी भी आके, जदों भी मैं उत्थे रोज़ 5:30 तो लैके 7:30 तक उत्थे सवेरे रोज़ हुन्ना वै, तुसी कभी भी आके मैनू मिल सकते हो। धन्यवाद जी।
6: सत श्री अकाल सारिआं नूं जी। मैं लैक्चर सुखविंदर आप जी नूं अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के उत्ते मुबारकबाद दिंदा हाँ। योग अज के जीवन में साडे लई सारिआं लई जरूरी हो गया है। योग तो बिना निरोग नहीं होया जा सकता,

0: योग दिता, योग दे मामले च भारत विश्व गुरु बनिया, और स्वामी रामदेव जी ने इनू जागृत पुनः जागृत किया, जड़ी कला सौ चुकी सी उनू जगाया, और साढ़े यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इनू पूरे विश्व के पटल से रखिया, और अज 200 देशों ने विच इहदी मान्यता होई, और 21 जून नू असी सारे घर ना बैठ के उस दिन अपने लागे योग क्लास जिथे भी योग का लग रहा है, क्रम चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, सारे देशवासियों नू, सारे पंजाब वासियों नू ये बेनती है भी वह हुम हम आके आयोजन च पहुंचन, सारे परिवार नाल मिलकर योग करन। योग जड़ा है सारे शरीर दीयां बीमारियां ही नहीं, ये मानसिक बीमारी नू भी खा जांदा है। योग दे ना दे विच प्राणायाम जड़ा पूरे भीतरी शरीर लई बहुत अच्छा है, और कुछ आसन है घुटनिया लई, सूक्ष्म व्यायाम है, शीर्ष आसन है, सूर्य नमस्कार है, मकर आसन, मरकट आसन, ये सारे आसन जड़े आ ग्रीवा चालन है सर्वाइकल लई। कोई ऐसा रोग नहीं है जड़ा असी योग दे नाल नहीं ठीक कर सकते, ते आओ सारे रल मिल के योग नू अपनाइए, ते स्वस्थ जीवन जीए, वधिया जीवन, बीमारियां तो रहत जीवन जीए। तो मैं कामना करदा है भी तुसी खुम हम आके योग ज्वाइन करो, सारा परिवार जावे, और धीरे धीरे हौली हौली साडे परिवार च योग वड़े, ताकि असी ये प्रण करिए भी 80-90 साल तक बुढ़ापा तंग ना करे, और 100 साल तक असी कोई दवाई ना खानी पवे, निरोगी जीवन जीए। परमात्मा ने सानू, वाहेगुरु ने सानू एडा अच्छा शरीर दिता, परमात्मा ने बख्शिया, उहदा घर है शरीर जिहड़ा है ईश्वर का घर है, तो इहनू बीमारी ना आन दईए। तो ये असी जागरूक रहिए, अपना खान पान चंगा रखिए, और योग नू अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। तो मैं आकाशवाणी का बहुत धन्यवाद करदा जिहड़े साडी गल नू घर घर तक व्यक्ति व्यक्ति तक पहुँचाते ने। तो इन्हां शब्दां नाल भारत माता की जय, वंदे मातरम, करो योग रहो निरोग, धन्यवाद।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है, योग हमें डूज और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
2: एसी 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से आधारित रेडियो रिपोर्ट, सहयोगी सोनिया रविशंकर, पेशकश आकाशवाणी जलंधर।
3: विश्व योग दिवस ते तुसी ए विशेष रेडियो रिपोर्ट सुन रहे सी। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। अमरिंदर गिल दी आवाज़ च एक कुड़ी पंजाब दी फिल्म चों ए गीत सुनते हैं।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। आओ गजलां सुनिए। पहला आशा भोसले नु सुनते हैं, कलाम शहरयार दा।

ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। शहरयार दे अल्फाज तुसी सुन रहे सी ते वाकई जी जिंदगी सानू हालात दे वक वक थावां वक वक जगहां ते लेके जांदी है। कोई थां इदां दी हुंदी है जिथे खुशियां हुंदियां ने, सुकून हुंदा है, ते कोई थां कोई जगह इस तरह दी हुंदी है कि असी मुश्किलां नाल घिरे अपने आप नूं महसूस करते हैं। पर जिंदगी इसे दा नां है जी, कदे दुख ने कदे सुख ने, कदे खुशी है ते कदे गमी है, कदे समा सौखा है ते कदे औखा है। पर आपां जिंदगी दे हर रंग नूं जदों खिड़े मत्थे स्वीकार करके चलते हैं तो फिर जिंदगी खूबसूरत लगती है। गज़लां आकाशवाणी जलंधर तो नशर कीतियां जा रही हैं। अगली गज़ल जगजीत सिंह होरां दी आवाज़ च, कलाम राजेश रेड्डी दा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
0: इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।
2: हेलो,
3: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
4: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लई रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
0: आकाशवाणी जलंधर तो तुसी गजलां सुन रहे हो जी। हुण सुनदे हां तलत अजीज दी आवाज़ च सूरज सनम दा कलाम।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा। लड़ीवार
0: नाटक होया।

0: जी
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: सर जी, मैं पॉल बोलदा, सराबा नगर जलंधर तो जी।
0: और जी पॉल जी, की हाल है? ठीक ठाक हो?
1: हाँ जी सब ठीक है, बढ़िया, मौसम बढ़िया हो गया हुण तां।
0: हाँ जी हाँ जी, मौसम वधिया हो गया जी।
1: हाँ जी
0: वधिया मौसम च ना फिर मूड भी वधिया रहिंदा।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल बढ़िया मौसम, मूड भी बढ़िया रहिंदा। जिवें तुसीं पहले गल कीती है कि काम करन नूं वी दिल होए, गर्मी दा होवे फिर काम करन वी नहीं कोई दिल करदा होए।
0: बिल्कुल सही गल है।
1: हाँ जी हाँ जी
0: ते चलो फिलहाल इस वेले वेला है कि असी थोड़ा काम करिए।
1: हाँ जी हाँ जी जी
0: दसो केड़ा गीत
1: साडा
0: सुनाइए।
1: साडा काम कर दियो जी, मुकद्दर का सिकंदर दा गीत ला दियो, रोते हुए ते है सब हंसता हुआ जो जाएगा।
0: वाह जी, बहुत प्यारा गीत है, किशोर कुमार होरां दा गाया।
1: मेहरबानी, शुक्रिया तुहाडा, धन्नवाद जी।
0: सुनदे हैं जी।

0: से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 पोतों दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की इस यात्रा को इन नए पोतों से और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत की प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ने उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया।

0: पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का इलाज जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार लगभग 32 यात्रियों वाली उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और घायलों के तीव्र स्वस्थ होने की कामना की है। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया में श्री जयशंकर विदेश मंत्री बी बत्सिसेग के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 24 और 25 जून को वे दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता करेंगे। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका तथा ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडम में एफआईएच प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मिनी वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़, अति डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। साडे स्रोते आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हैं ते नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए भी तुसी आकाशवाणी जलंधर नाल जुड़ सकते हो।

प्रोग्राम चल रहा जी धमक जलंधर पैंती और ये प्रोग्राम तुसी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो सुन रहे हो। अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचे जी गुरचरण सिंह, गुरलाल बीर सिंह, परवान सिंह, हारदिया सिंह, पिंड डब वाले कला और ये सिटी इन्होंने लिखी जी, शहर साडा फाजिलका है। शुक्रिया जी प्रोग्राम च तुसी हाजिर होए हो। और कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता ये भी पहुँचे ने। गांव जोगी वाला श्री गंगानगर तो प्रेम सहारण, मोनिका ते मनीष सहारण भी हाजिर ने। और अगला सुनेहा साढ़े नूं पहुँचाया है मजनू का टीला तो कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और सतना एमपी तो उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक पहुँचे ने। हरजिंदर सिंह बरार वीपीओ जीदा डिस्ट्रिक्ट बठिंडा तो पहुँचे ने जी। और अगली फरमाइश साढ़े तक पहुँचाई गई है पंचकुला सेक्टर 9 तो आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान ते राधे भाविक ढींगरा, दिल से शुक्रिया जी साढ़े वालों भी। मंडी डबवाली तो बसंत सिंह चंद, राजकुमार, कुलदीप गांधी और अलीका तहसील डबवाली तो रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत, सरबजीत, रानी, सोनू, रजनी। गांव नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ तो बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू ये भी पहुंचे ने। और सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, अनारकली बाजार।

जगराओं तो हाजिर ने, डुमराओं बिहार तो डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। लो जी सारे डॉक्टर भी साढ़े को पहुंचते हैं। बक्सर बिहार तो शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। जलालाबाद पच्छमी तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा। रजिंदर पाबला, हरमन, रितु सैनी, गुरमन और ग्रीन पार्क कलोनी पटियाला तो हाजिर ने जी है। अगला मैसेज साढ़े तक पहुंचाया गया, पिंड ते डाकखाना निमनाबाद नेड़े सफीदो मंडी जिला जींद हरियाणा तो पहुंचे ने जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। शुक्रिया जी तहे दिल तो। पिंड बुआणी तहसील पायल जिला लुधियाना तो रणजोत सिंह, हरजोत सिंह, शुक्रिया जी। और खैल बाजार पानीपत तो नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कलोनी रोहतक तो पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का पहुंच गए ने। और मनीला फिलीपीन तो लो फिलीपीन वाले भी पहुंच गए हैं जी पूरे समय ते। मदन मोहन लहर, सरबजीत, संजू, नीतिका, अजय, एंजल, लाडला पोता अर्नब लहर, शुक्रिया जी बहुत बहुत। तुसी जिथे मर्जी चले जाओ पर आकाशवाणी जलंधर नाल जिहड़ा तुहाडा प्यार है वह कदी भी नहीं मिट सकता। गिद्दड़बाहा तो पहुंचे ने मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल ते बेबी हिनाशा। रमेश बिल्ला चावला पिंड ते डाखाना खुईया सरवर तो तहसील अबोहर जिला फाजिलका तो, आस्था जयश्री, संतोष चावला, हेमंत दीपक, रमेश चावला, राइजल हेजल, विहान चावला, रिजू बब्बू, विहू चावला, सारा ही चावला परिवार साढ़े को पहुंच चुका है। और अगला सुनेहा ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही, मेहरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड तो ये हाजिर ने। अगले सुनेहे नाल मामूल बाड़ी महाराष्ट्र तो सोपान ताइडे, वसंत राव भोजने, पी एस नहावकर ते तुषार करांगले। बठिंडा रोड मंडी डावाली तो राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लक्की, तान्या ये भी पहुंच गए ने जी। मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद क्लीम अंसारी, नई बस्ती गंज डुंड वारा तो ये हाजिर ने। विजय तंवर ते ममता ये मुंडी खरड़ तो पहुंच चुके ने जी। कलन और तो भी पहुंच गए ने नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन ते मयंक शर्मा। और प्यार परी नमस्कार ते असी शुरू चिपोल दिती है जी तुहानू क्योंकि साढ़े प्यारे स्रोते इंतजार कर रहे होंदे है नमस्कार दा। दाऊद सराय सहारनपुर तो अनवर साबरी, शन्नो, मुदस्सिर, मुजक्किर और जरीफ अंसारी ये भी हाजिर ने। और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुंचाया गया है जी, मैस गेट नाभा तो पहुंच गए नाम सोमदत्त, ज्योति रानी, कैरव गुरमन्नत, शुक्रिया जी बहुत बहुत। और बाघा पुराना वाले भी पिछे नहीं रहते, ये भी पहुंच जाते हैं समय नाल। सतनाम सिंह रखरा, अमरजीत कौर, पोतरा तेग फतेह सिंह रखरा, पोतरी जसगुन रखरा, शुक्रिया बाघा पुराना वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अगला सुनेहा साढ़े को पहुँचाता जी, जादला टाउन SBS नगर तो विनोद संधु, कमल संधु, रितिश संधु, आकांक्षा संधु, भरत भूषण संधु, बहुत बहुत शुक्रिया जी। विनोद संधु जी तुहाडा बहुत प्यार है, तुहाडा भी आकाशवाणी जलंधर नाल इस तरह प्यार बनिया रहे, कभी इस प्यार च कमी ना आवे। अगले सुनेहे नाल साढ़े कोल पहुंचे ने जी पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा भी पहुंच गए ने जी। और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुंचाया गया है दत्रेंगी तो भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा ते रुद्र वर्मा ने। और वाइट फील्ड बेंगलुरु तो भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति ते पारुष, थोड़े सारियां दी रली मिली पसंद ते पेश कर रही हां चित्रा सिंह दी आवाज़ च चरखा में।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

अंतराल तो बाद एक बार फिर तो निघा स्वागत सारे ही श्रोतियां दा प्रोग्राम धमक जलंधर पेंदी च। और धमक जलंधर पेंदी च अगला सुनेहा पिंड कबूल शाह खुबण जिला फाजिलका तो वधावा सिंह बलकरन तन्नू पवी जस्सी कहिंदे जी प्रोग्राम सानू बहुत वधिया लगता है। शुक्रिया जी, सानू भी तुहाडा सुनेहा जिहड़ा इन्ने दिल नाल प्यार नाल भेजते हो बहुत ही वधिया लगता है। अगला सुनेहा साढ़े कोल पहुंचिया जी आदर्श नगर मलोट पंजाब तो राज शर्मा मीना शर्मा योगेश मैंडी सौरव साइना और निवान शर्मा हमेशा दी तरह पहुंच चुके ने जी समय नाल कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया तो ओम प्रकाश राय श्रीमती ऊषा अमित कुमार हैप्पी राय दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर तो प्रतीक राय श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय पहुंचे ने। तेलंगाना भोंगिर तो मुहम्मद बुरहानुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला समायरा आजमीन गुड़िया गांव टाणी लाल खां जावेद खां अरमान खान इमरान खान सीमा बानो विनोद खान सोहिल खान जुनेद खान शुक्रिया जी। और पिंड नथाणा बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता ए भी पहुंच गए ने। जसपाल भारती वीना भारती सुरेंद्र मनदीप डिंपल युवराज हैप्पी शिवाय तानेवालिया साउथ अवेन्यू अबोहर तो पहुंचे ने। पिंड इस्लामवाला डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो सोनलाल राठी ओम प्रकाश शगुन राठी लवकुश वर्मा शतरपाल सिंह राजेंद्र सिंह बाबू सिंह काका पट्टी पिंड कमालवाला तो गुरमेत सिंह विर्क ये भी पहुंच गए। पिंड जाफरा डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो फलक सिंह राजू बाबू सोनू अमनदीप पहुंच गए ने जी। सतीश कुमार बांसल पिंड सावंतखेड़ा नेड़े मंडी डब वाली तो हरभजन सिंह हरभजन मान दे आवाज़ सुनन दे बहुत इच्छुक ने ते फिर अगला गीत असी हरभजन मान दी आवाज़ च सुनावांगे जी। दादरी गेट भिवानी तो कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा कपिल ते कुनाल मेहरा भी पहुंच गए ने। सैयद मसरूर शाइना हसन अक्सा नाजिया आफिया इब्राहिम सद्दाम अदीब गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर तो पहुंचे ने। और हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया नवनीत भाटिया पप्पी भाटिया सोनू भाटिया जमशेदपुर तो हाजिर हुए ने। सुखवीर सिंह कोमलप्रीत कौर रोशनप्रीत कौर पिंड छाजली जिला संगरूर तो शुक्रिया जी तुहाडा भी। और अगला मैसेज साढ़े कोल पहुंचिया जी मोटाला महाराष्ट्र तो विजय सुरालकर रतनमाला

आरती गौरी ते ओम प्रकार ओम कुमार सुरालकर। जी अगला सुनेहा जिहड़े हठूर पिंड तों सानू सुनेहे पाउंदे ने, अज इकबाल सिंह जी ने भी पाया और उहनां दे बेटे जिहड़े इंजीनियर ने उहनां ने भी पाया। तो फिर नाम है सारयां दे इकट्ठे ही लिख के भेजदे ने, सो इहनां दा भी मैं सुनेहा जिहड़ा है जरूर पढ़ांगी। बड़े टाइम बाद तुसीं भी पहुँचे हो। पिंड हठूर जिला जगराऊं जिला लुधियाना तों इकबाल सिंह हठूर, रजिंदर कौर, अमनदीप सिंह, सिमरजीत कौर हठूर, जिहड़ी गीत दी फरमाइश तुसीं सानू कीती चित्रा सिंह दी, ओह असीं पहलां ही सुना चुके हाँ। शुक्रिया जी। इस तरह ही तुहाडे सुनेहे साडे कोल धमक जलंधर पैंदी जरूर पहुँचा। अगला सुनेहा पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा तो अनिल मोहन, ऊषा मोहन, टिल्लू नायक ते मधु नायक पहुँचे ने। बस स्टैंड पिंड फरवाही जिला संगरूर तो नाम है जी राजू अंसारी, बाबू अंसारी, पिल्लू अंसारी, लाली शौंकी। शुक्रिया। सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा, रीतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज पहुँचे ने। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भरत मक्कड़, कमल सानी पिंगावाला चौंक गराया तो पहुँचे ने जी। और अमरीक सिंह टेलर भी पहुँच गए है, ये पहुँचे ने जी मास्टर जलान ज़िला संगरूर तो। और नाल साथी मैंबर भी लैके आए ने मनप्रीत सिंह, बलजिंदर सिंह ते परमजीत पुरवा होरा नू। टालीवाला बोदला ज़िला फाजिलका तो अमीर चंद, नवदीप चतरत, अर्नव चतरत, लाजवंती ते अनीता राणी भी हाजिर ने। और दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड तो मुहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन बाबू, मिरफा नवाज, बेबी चाहत ते सादिया। शाहदरा दिल्ली तो तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा। चंडीगढ़ तो राहुल खुराना, रचिता, केशु, रिधान खुराना। कृष्णा पार्क नवी दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जौड़ा ते सीटी दीवाना भी पहुँच गए ने जी। और पिंड हीरावाली जिला फाजिलका तो पक्के स्रोते हैं कहिंदे असी, कौन ने? सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु सरमन रिणमा कहिंदे जी धमक जलंधर पैंदी सानू बहुत वधिया लगता है। शुक्रिया जी, तुहाडे सुनेहे भी सानू बहुत वधिया लगते ने। इस तरह बने रहो। और आकाशवाणी जलंधर च दूसरा जिहड़ा सुनेहा पढ़ रही हाँ, बुलटाणा वडशिंगी महाराष्ट्र तो, महाराष्ट्र तो बहुत प्यार मिलता है, शुक्रिया जी तुहाडा। अमोल मानकर, शोभा ताई, लो जी दीपाली भी पहुँच गई। दीपाली और शलोक कुमार बुलटाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र तो, सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमेध कुमार ये भी हाजिर ने। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਓ ਫਿਰ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਹਾਂ।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिल्सिक से एक साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वस्ते वेड़े।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: जिस खूबसूरत गीत तो बाद इसने हैं, तो बाद असी एक बार फिर हाजिर हाँ
1: जी। पूनम पूनम मैं सोच रही सी बैठे बैठे कि हुण जिहड़ा सिलसिला है वह पकवान है,
0: जी
1: और पकवान दे तहत बहुत सारियां चीज़ां असी दसदे हुंदे हैं, पर जो अज मैं रैसपी लैके आई हाँ ना वह सब दी पसंद है। पहले मैं
0: अच्छा
1: तुहानू पुछूंगी, तुहानू अंब दा अचार किवें दा लगदा है?
0: जी, तुसी पुछो कि अंब दा अचार किवें लगदा, तां मैनूं लगदा कि हर कोई यही कहेगा कि अंब दा, जिवें असी फल मानदे हां कि फलां दा राजा है अंब, मैं लगदा अचार दा वी राजा ही है अंब।
1: बिल्कुल सही गल है।
0: अंब दा अचार इहो जी चीज़ है जो हर एक इंसान नूं पसंद होएगा शायद।
1: सही गल है। परौंठे होण या कोई भी ऐसी चीज़ होवे, सब्जी जे कहिंदे ना घर दे विच सब्जी सवादना बनी होवे तां अचार थोड़ा जिहा लै लो अंब दा
0: कई बारी
1: तां।
0: तां मैनूं इंज हुंदा है कि अचार इन्ना स्वाद बनिया हुंदा है कि मन करता है कि रोटी अचार नाल ही खाइए, सब्जी नाल खाइए ही ना।
1: बिल्कुल, जदों असीं कितें जाने आ ना घूमन फिरन, फिर बंदा परौंठियां दे नाल पूरियां दे नाल अचार ही रख लैंदा।
0: जी
1: सो अज कोशिश रहेगी कि सारिआं नूं आपां पूरी तर्हां दस सकीए कि अचार किवें दा पाइए, तां कि इक डर रहिंदा है कि जदों असीं अचार पाउंदे आ मन दे विच कि खराब ना हो जाए।
0: बिल्कुल, तुसी सही कहा। हुण साडे सुनण वाले सोच रहे होंगे कि अंब दा अचार असीं सारे पा लैंदे हाँ, है ना, इह बड़ा सौखा है, पर इस गल नूं वी मनना पएगा कि इह जो अचार असीं पाउंदे हाँ बहुत ही वारी इह खराब हो जांदा है, ते सानूं किसी किसी दे हाथ दा पाया अचार बड़ा चंगा लगदा है।
1: सही गल है। ते पुणे मैं तुहानूं सही दसां, मेरे हाथ दे जिहड़ा अचार मैं पानी आ ना वह तां बच जांदा है, और आंढ गुआंढ दीयां जिहड़ियां मेरियां सहेलियां ने उह मेरे तों ही अचार पवांदियां ने।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: इस लई तुसीं अज अचार दसण जा रहे हो फिर?
1: बिल्कुल। ते मैं तुहानूं दस दिंदी हां कि दो तर्हां दे अंब हुंदे ने, एक तां देसी अंब हुंदा है, एक राम केला। इह
0: ठीक है।
1: दो अंबां दा अचार पाया जांदा है, ते मैं प्रैफर करदी हां राम केला अंब दा अचार, उह ज़्यादा देर मतलब रहिंदा है ते वधिया बनता है उहदा।
0: जी
1: सो अंब दा चटनियां भी बनदियां ने, सब्जी आम बनना, बहुत सारियां चीज़ां असी रैसपीज खाने हैं। तो अंब दे अचार वास्ते तुहानूं की चाहिए ये मैं तुहानूं दस दिंदी हां। कच्चे अंब 1 किलो लै लैंदे हां आपां, 1 किलो अंब दा अचार पाउंदे हां अज, है ना।
0: ठीक है।
1: ते लूण इस दे विच पएगा 100 ग्राम, हल्दी पाउडर पएगी 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर

0: दो चम्मच, सौंफ दो चम्मच पैणगे, मेथी दाणा एक चम्मच पेगा, राई यानी सरों के दाने जड़े होंगे दो चम्मच पैणगे, हींग हो गया 1.5 चम्मच, तो सरों का तेल 250 मिलीलीटर चाहिए है सानू
1: जी
0: 1 किलो अंब के अचार वास्ते। हुण आपां अंबां नूं तैयार करना पैना। सब तो पहला कच्चे अंब नूं धो के सुका लियो, और सुकाना बहुत जरूरी है क्योंकि जदों इहदे विचों नमी सारी खत्म हो जाती है फिर ये थोड़ा लंबा समा टिक जाता है।
1: जी
0: इस तो बाद अंब नूं छोटे छोटे टुकड़ियां दे विच कट के बीज इस दे कढ लैणे ने। असी कटे हुए अंबां दे टुकड़ियां नूं नमक हल्दी पाउडर ते लाल मिर्च पाउडर असी मिक्स कर देना चंगी तरह,
1: जी
0: ते क्योंकि जदों असी नमक पाते हैं ना अंब दे अचार दे विच मिक्स करते हैं तो पानी छड्ड दिंदा है, पर जदों उन्हों चंगी तरह धुप्प लगवाई होंगी है तो फिर वो पानी नहीं छड़ता। इस नूं चंगी तरह मिला के 2-3 घंटे धुप्प च रखना है, ते अंब नूं वाधी जिहड़ा पानी है वह निकलण देना। या तो तुसी अंब नूं कट्टण तों बाद सुका लो या फिर ये सारे मसाले मिक्स करन तों बाद सुका लो, ये
1: जी
0: तुहाडे उत्ते है। उस तो बाद तुसी की करना, एक पैन दे विच सौंफ, मेथी दाणा, सरों के दाणियां नूं हल्का जिहा भुन लैना है, ठंडा होण ते इन्हां नूं मोटे तौर पर पीस लेना है। फिर तेल गर्म करना है, सरों के तेल नूं चंगी तरह गर्म करो अते इहनूं ठंडा होण दिओ। ठंडा तेल अचार नूं ज़्यादा देर तक सुरक्षित रखता है।
1: ठीक है
0: सो अंब दे टुकड़ियां विच पिसिया होया जिहड़ा मसाला है, हींग ते सब कुछ मिला देना है। हुण ठंडा सरों का तेल पाना है, हर चीज़ नूं चंगी तरह मतलब मिलाना है, मिक्स हो जाना कि हर टुकड़ा जिहड़ा मसालियां दे विच मतलब
1: रच
0: चंगी तरह
1: जावे
0: रच जावे।
1: जी
0: अचार नूं साफ ते सुके जिहड़े कहिंदे कच्च दे जार दे विच पाना चाहिए, क्योंकि जदों
1: जी
0: असीं प्लास्टिक दा इस्तेमाल करते हैं ना तो प्लास्टिक दे विच ना ये खराब हो जाता है। सो शीशी नूं 2-3 दिन जे तुसीं धुप्प लगवाओगे उन्हां नूं जिहड़े जार दे विच तुसीं पाया है तो अचार चंगी तरह पक जाएगा। तो अंब दा अचार तैयार है जी। सो जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडा अंब दा अचार खराब हो जाता है, इस बार थोड़ा जिहा तकनीक नूं चेंज कर लो, तरीके नूं चेंज कर लो, शायद हो सकता है इस बार तुहाडा अंब दा अचार बच जाए,
1: क्या बात है।
0: है ना। ते पूनम नेक्स्ट जिहड़ी रेसिपी है वह भी कच्चे अंब दे अचार दी खट्टी मिठी चटनी है, जो इस वेले बहुत लोग पाउंदे ने,
1: बिल्कुल
0: उन्हों असी लौंजी कहने आ। इनू सब तो पहला असी की करना, अंबा नू छिल के टुकड़िया दे विच कटना है, ते फिर गुड़ जां चीनी दी चाशनी विच मसालियां नाल पकाउणा पैंदा है इनू। पर इहदे वास्ते समगरी आपां दस दिंदे आ। सब तो पहला
1: जी
0: कच्चे अंब चाहिए ने सानू 500 ग्राम, गुड़ या चीनी 400 ग्राम, स्वाद अनुसार भी लै सकते हो तुसी। सरों का तेल 2 चमचे, सौंफ 1 चमचा, कलौंजी 1.5 चमचा, जीरा 1/2 चमचा, मेथी दाणा 1/4 लै लेना है तुसी, हींग 1 चुटकी, लूण 1 चम्मच, काला लूण 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच लेना, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, ते गरम मसाला 1/2 चम्मच।
1: जी
0: सो सारे मसाले जिहड़े तुहाडे घर दे विच मिल जाणगे, सिर्फ अंब ही बाजारों खरीदने पैणगे। सो अंबां नूं चंगी तरह धो के सुका लो, फिर इन्हां नूं छिल के लंबे जां चौरस टुकड़ियां दे विच कट लो, कई तां कद्दूकस कर लेंदे ने। फिर इस विच तड़का लगाना है, कढ़ाई दे विच सरों दा तेल गर्म करना है,
1: जी
0: जीरा, सौंफ, कलौंजी, मेथी दाणा ते हींग पा के इस नूं कुछ सैकंड लई भुन लेना है। कट्टे हुए अंब या जिहड़े तुसीं कद्दूकस किए हुए ने उन्हां नूं उहदे विच पा लेना, इस दे नाल हल्की लाल मिर्च, सादा लूण, काला लूण मिक्स कर लेना, 2-3 मिंट लई इहनूं हिलाउंदे रहना है तुसीं। 1/2 कप पानी दा पा के कढ़ाई नूं छड्ड दिओ, अंबा नूं 5 मिनट लई नरम होण तक पकण दिओ बस। मतलब तुसीं ज़्यादा भी नहीं गलाने कि बिल्कुल ही मतलब उही बन जाए, ते आपां जदों अंब नरम हो जाण ना
1: जी
0: इस विच कुटिया होया गुड़ चीनी पा देनी है। गुड़ पूरी तरह पिघलाण तक ना इसनों थोड़ा जिहा हिलाउंदे रहना असीं, ते इस दे नाल गुड़ की चाशनी जिहड़ी तैयार हो जाती है। सो एक तार वर्गी चाशनी बन जाएगी, जे तुसी हाथ दे विच लोंगे तां एक तार बनदी हुंदी है, सब नूं पता है इस चीज़ दे बारे। ते उस तो बाद अखीर दे विच गरम मसाला मिलाना है, ते गैस फिर उस तो बाद बंद करके ठंडा होण तक इहनूं रख लेना है। चटनी नूं लंबे समय तक जे स्टोर करना है तां इहनूं याद रखना है कि गिल्ला चमचा नहीं लगाना, क्योंकि लोग की करते हैं गिले चमचे दे नाल चटनी कढ़ के खा लेंदे ने, जिस दे नाल चटनी खराब हो जाती है। तो इसनों पूरी तरह ठंडा करके ही जार दे विच पाना है मर्तबान दे विच।
1: ठीक
0: सो
1: है
0: ये टिप्स है जिहड़ियां आपां नूं याद रखणियां है जदों भी असीं मिठी चटनी बनाते हैं या अंब दा अचार पाने हैं। सो जे तुसीं इन्हां नूं याद रखोगे तां कोई चीज़ खराब नहीं होएगी।
1: बिल्कुल जी। ये गल्ला दसन का मकसद यही सी कि अंब की खट्टी मिठी चटनी होए या फिर अंब का अचार होए असी पाउंदे जरूर हाँ, तो सानू लगता है कि ये तो बड़ा सिंपल है, हर कोई पा लेंदा है। पर मैनू हुणा ने टैक्निक दसी है कि किवें इसनों बचा के रखना है, किवें असी इहो जिहा तरीके नाल बनाउणा है कि यह खराब ना होवे। तो ये छोटी छोटी सावधानियां असी रखांगे तो बड़ी लंबे समय के लिए असी ये बचा के रख सकते हैं।
0: बिल्कुल पूनम, और मैं लगता है कि जे अपनी रोटी का स्वाद बनाना है तो ये छोटी छोटी चीज़ा होनिया चाहिए घर के, क्योंकि कहते हैं कि खाने का स्वाद भी बढ़ता है तो नाल दे नाल सेहत ते हाजमा भी सही रहता है।
1: बिल्कुल तुसी सही कहा, ये ना सिर्फ जो अचार है चटनियां है ये साडा स्वाद वधाउंदियां ने, बल्कि ये साडी

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਲੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति

0: सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akash.

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ तुहानू जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित किए जाण वाले प्रोग्राम ते उहनां दे प्रसारण समय दी। हुण तो थोड़ी देर बाद 1:10 ते तुसी प्रादेशिक खबरां सुणोगे। सवा 1 तो लैके 2:15 तक तुसी प्रोग्राम सुणोगे फौजी वीरां लई। इस विच खबरां अपने निर्धारित समय ते प्रसारित कीतियां जाणगियां। दूजी सभा च 4 दियां मुख खबरां तो बाद 4:02 ते तुसी सदाबहार गीत सुणोगे। शाम 4:30 तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तों शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करोगे ते शाम 5:30 सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। देहाती प्रोग्राम दा समा रहेगा शाम 6:30। अज इस विच कम दियां गल्लां, मंडियां दे भाअ दे नाल नाल लड़ीवार नाटक सुणोगे। अवतार सिंह बिलिंग दे नावल ते आधारित पंजाबी लड़ीवार नाटक होया देस पराया दी 12वीं कड़ी सुणोगे। इस तो इलावा कल दे प्रोग्राम मौसम दा हाल ते गीत संगीत भी सुनाया जाएगा। सत्त 40 मिनट ते हिंदी वार्ता सुनोगे। वार्ताकार होंगे डॉक्टर रूपिका मनोट। सत्त 50 मिनट ते चंद गजलां समात फरमाओगे। जिंदगी दे फलसफ्यां ते आधारित प्रोग्राम पेश किया जाएगा जिंदगी हसीन है। इसका समा रहेगा रात 8:00। साढ़े दिल्ली केंद्र तो तुसी सुनोगे 8:45 ते समाचार संध्या, 9:00 न्यूज़ एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट ते रात 9:30 आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो पंजाबी नाटक सुनोगे सरहद। दस बजे दियां मुख खबरां तो बाद 10:02 ते तुसी मुशायरा सुनोगे। शोरा हजरात मोहम्मद ओवैक रेणु नैयर मोहम्मद अनवार आजर डॉक्टर मोहम्मद जमील उर रहमान इस विच इन्हां ने भाग लिता और रात 10:30 तुसी चंद गजलां समात फरमाओगे। DTH दी आकाश

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 1:10 हो रहे ने, आओ सुनते हैं प्रादेशिक खबरां।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पंजाब के राज्यपाल और केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने विशेष टीबर सोध SIR 2026 मुहिम के तहत वोटर सूचियां नूं अधिक सटीक अपडेट और समावेशी बनाउण दे उपरालियां की शलाघा की है। उन्होंने सारे योग वोटरां नूं अपने वेरवियां की पुष्टि करन, जरूरी सोध और अपडेशन समय सिर करवाउण और बूथ लैवल अफसरां BLOs नाल पूरा सहयोग करन दी अपील की थी, ताकि वोटर सूचियां विच शुद्धता यकीनी बनाई जा सके। श्री कटारिया ने कहा कि एक सटीक और अपडेट वोटर सूचियां मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद नहीं। उन्होंने नागरिकां नूं इस महत्वपूर्ण लोकतंत्री प्रक्रिया नूं मजबूत बनाउण हित इस मुहिम च सरगर्म भागीदारी की अपील की थी। पंजाब के राज्यपाल और केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल चंडीगढ़ में आयोजित फ्यूजन फैसट 2026 तहत विश्व संगीत दिवस 2026 के समारोह में संबोधन किया। इस मौके उन्होंने कहा कि संगीत एक आलमी भाषा है जो सब प्रकार दियां हदां नूं पार करके लोगों नूं जोड़न, उन्हां दा आत्मविश्वास वधाउण अते सुचारू समाजिक बदलाव लियाउण दी समर्था रखती है। इस प्रोग्राम च संगीत, नृत्य अते विजुअल आर्ट के जरिए दिव्यांग कलाकारां अते बच्चों की असाधारण प्रतिभा, रचनात्मकता अते दृढ़ संकल्प का विखाला किया गया। चंडीगढ़ के सभ्याचारक मामलों बारे विभाग वालों करवाए इस समारोह च बतौर मुख मेहमान शिरकत करदियां श्री कटारिया ने कहा कि दिव्यांग कलाकारां दी प्रतिभा, दृढ़ इच्छा शक्ति अते उपलब्धियां समाज लई प्रेरणा दा स्रोत ने अते इह सिद्ध करदियां ने कि प्रतिभा किसी भी शरीरक हद की मुहताज नहीं हुंदी। श्री कटारिया ने दिव्यांग कलाकारां लई 5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार देण दा ऐलान किया। इस प्रकार की यह पहली पहल है जिसका उद्देश उन्हां दियां कलात्मक उपलब्धियां अते समाज विच उन्हां दे योगदान नूं सन्मानित करना है। इस प्रोग्राम नूं नशा मुक्त भारत दे संकल्प नाल जोड़दे हुए प्रशासक ने कहा कि सभ्याचारक अते रचनात्मक गतिविधियां नौजवानों नूं सकारात्मक बदल प्रदान करदियां ने अते उन्हां दी ऊर्जा नूं राष्ट्र निर्माण अते शख्सियत विकास की दिशा च प्रेरित करदियां ने। उन्हां ने कलाकारां, सिखकां, संस्थावां ते नागरिकां नूं तंदरुस्त, समावेशी ते नशा मुक्त समाज के निर्माण लई सांझा उपराला करन दा सद्दा दित्ता। BJP ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਲ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ BJP ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:10 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਤੋਂ 7:40 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਠਿਆਲੀ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਏ ਕਰੀਬ 40 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਛੜ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਕਣਕ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ SDO ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਕਲੇਨ ਅਤੇ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ 40 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਚੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ

फौजी वीरों, मेरे वालों यानी दीपाली वधवा वालों जय हिंद। लैके हाजिर हाँ तुहाडे मनोरंजन लई कुछ हिंदी फिल्मी नगमे। पेश है प्रोग्राम दा पहला गीत, शुद्ध देसी रोमांस फिल्म चो लिया। आवाज़ां दित्तियां ने सुनिधि चौहान ते मोहित चौहान ने।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: अगर पनाहगाह में मुंतकिल किया गया है। प्रोजेक्ट चीते का आगाज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2022 में किया था। उस वक्त नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाकर छोड़ा गया था। इसके बाद जनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते वहां लाए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नाशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर दो मुल्कों के सरकारी दौरे के पहले मरहले में मंगोलिया पहुंच गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो भारत और मंगोलिया के दरमियान खसूसी साझेदारी को आगे बढ़ाने की खातिर मुफीद तबादला ख्याल और बातचीत के मुंतजर हैं। अपने इस दौरे में वजीर खारजा मंगोलिया के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर अपने दौरे के दूसरे मरहले में बुध को 2 दिन के दौरे पर जनूबी कोरिया जाएंगे। वो अपने हम मनसब चो ह्यून के साथ तबादले ख्याल करेंगे और जुमेरात को जेजू के मकाम पर अमन खुशहाली से मुतालिक जेजू फोरम में क्लीदी खिताब करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने मशहूर मारूफ जरई साइंसदान और पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता सरदारा सिंह जोहल से आज लुधियाना में मुलाकात की और पंजाब के जरई बहरान पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद जनाब नबीन ने कहा कि एक ऐसी शख्सियत से बातचीत उनके लिए बायस इफ्तिखार है जिसने ज़राअत के शोबे में गैर मामूली तआवुन किया। उन्होंने कहा कि जनाब सरदारा सिंह के साथ बातचीत के दौरान उन्हें ज़रई मामलात पर अहम मालूमात हासिल हुई और उन्हें एतमाद है कि उनके नज़रियात और मशवरे मुल्क के लिए सूदमंद साबित होंगे।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: इत्तेहाद नशरियात और पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर ममलुकत डॉक्टर एल मुरुगन आज मध्य प्रदेश के 2 रोजा दौरे के तहत भोपाल पहुंचेंगे। डॉक्टर मुरुगन आज शाम भोपाल हवाई अड्डे पहुंचेंगे और वहां से वो रियासती गेस्ट हाउस की जानिब रवाना होंगे, जहां वो भोपाल जिला कलेक्टर के साथ एक मीटिंग करेंगे। कल वो देवास जिले के कनोड तहसील के दोकाकुई गांव जाएंगे, जहां वो एम्पीलैड स्कीम के तहत मंजूरशुदा मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे। उमूर खारजा से मुतालिक पार्लियामानी कायमा कमेटी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 4 दिन का मुतालियाती दौरा शुरू कर दिया है। इसका मकसद क्लीदी सरहदी सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी मामलात का जायजा लेना है। मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर इस कमेटी के चेयरपर्सन हैं। हमारे नवा निगार ने बताया है कि ये कमेटी सरहदी बंदोबस्त और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल का बरसर मौका जायजा लेने के लिए इस महीने की 25 तारीख तक जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह का दौरा करेगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज आसाम और मेघालय में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने जेली हिमालयाई मगरबी बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, ओडिशा और शिमाल मशरक हिस्सों में कहीं कहीं कल तक शदीद बारिश की भी पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार जजायर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज़ हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। IMD के मुताबिक छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक गर्मी का जोर जारी रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज सुबह वैंकूवर में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 1-3 से हराकर वर्ल्ड कप में अपनी अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। लिवरपूल के सरकर्दा खिलाड़ी मोहम्मद साहले ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ ही मिस्र की टीम ग्रुप जी में सरफहरिस्त आ गई है। इससे कबल आज फ्लोरिडा में ग्रुप एच के एक मैच में केप वर्ड और यूरुग्वे का मुकाबला 2-2 से बराबरी पर ख़त्म हुआ। आज के मैचों में ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 शुरू होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला मुकम्मल बजट पेश किया है, जिसमें समाजी बहबूद, बुनियादी ढांचे के फरोग और रोजगार पर तवज्जो मरकूज की गई है। खवातीन के लिए मखसूस कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर मंगोलिया के अपने हम मनसब के साथ इक्तसादी राबतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के मामले पर बातचीत करने वाले हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज आसाम और मेघालय में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर

0: वर्ल्ड कप में अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। फौजी वीरो खबरां तो बाद फिर हाजिर हो गए हां तुहाडे मनोरंजन लई कुछ होर फिल्मी नगमे लैके। तुहाडे नजर करांगी जरा हटके जरा बचके फिल्म दा गीत, आवाजां वरुण जैन, सचिन जिगर ते शहदाब दियां। गीतकार ने अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार सचिन जिगर।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिसकर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन ₹5,000 बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में ₹5,000 की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत

0: में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका

0: बमेरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि CISF के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल STF ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आज शाम दो दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार

कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स, अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो ते नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए भी तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते हो। रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने सुरजीत सिंह। आओ सुनते हैं इन्हां दी आवाज़ च माइया।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: इंग्लैंड की धरती ते भारत दीआं धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

जाता है, ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

न जाने कितने लोग जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, मगर कुछ लोग दुआ बनकर दिल में बस जाते हैं। वक्त बदल जाए, मौसम बदल जाए, पर दिल की आवाज़ हमेशा यही कहती है, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा।

मोहब्बत की राहों में शब्द कम पड़ जाते हैं, नजरें ही दिल का पैगाम सुनाती हैं। जब दो दिल एक दूसरे को अपना मान ले, तब प्यार होता है और इकरार हो जाता है। लो सुनो श्री 420 फिल्म का गीत। आवाज़ आदित्या ने, मन्ना डे और लता मंगेशकर ने इस गीत नु लिखिया, शैलेंद्र ने और संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन।

चांद खिड़की पर ठहरा रहा, सितारे भी सारी रात जागते रहे, हम करवटें बदलते रहे और किसी की यादें दिल को बहलाती रहीं। सदाबहार गीत दा आखिरी नगमा। थोड़ी नज़र कर रही हैं, आपकी कसम फिल्म चुलिया गया, आवाज़ा दितिया ने, लता मंगेशकर ते किशोर कुमार ने, गीतकार आनंद बख्शी ते संगीतकार राहुल देव बर्मन।

की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजणहारा। इस गुरबाणी फरमान मुताबक ओ प्रभु ही सबदा ओट ते आसरा है। प्रभु प्यारे भगत उसे ते ही ओट रखदे हन ते उसे दी ही टेक मनदे हन। दीन दुनिया तेरी टेक, सब मैं रव्या साहिब एक। उसे नु ही सर्व कला समर्थ दयालु, दीना ते दया करन वाला मनदे हुए उस अगे ही अरदास बेनती करदे हन। राग वढ़ंस विच बाणी के बोहित साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने, कर किरपा प्रभ दीन दयाला, तेरी योट पूरन गोपाला। सरवण करदे हां भाई तरलोचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरी ओट पूरन गोपाला। इस शब्द का गायन कीता सी पाई तरलोचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। कुल सृष्टि का मालक अपने प्यारे जीवां दी हर स्थान ते हर पल रख्या करदा है। उसकी कृपा हो जावे ता इंसान अज्ञानता दे अंधकार वाले डूंगे तो डूंगे खूह विच्चों बाहर निकल के ज्ञान रूपी चानण प्राप्त कर लैंदा है। ओ दीना ते दया करन वाला प्रभु उस जीव दे दुखां नूं भी हर लैंदा है। ताही ता उसनू दुख पंजन भी किया जांदा है। राग मल्हार विच गुरबाणी फरमान है, हे गोबिंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल, प्राण नाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। सरवण करदे हां बीबी चरणजीत कौर होरां वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

हे गोबिंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। इस शब्द अगायन कीता सी बीबी चरणजीत कौर होरा। हुण सरवण करदे हां इस

दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े। इस शब्द का गायन कीता सी पाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के

0: कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लो हुण सुनो साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा। शाम 6:30 बजे सुनोगे देहाती प्रोग्राम। अज दे इस प्रोग्राम विच होया देस पराया नाटक दी 12वीं कड़ी सुनोगे। काम दियां गल्लां होणगियां। इस तों इलावा माड़े पाणी दी सही वरतों किवें कीती जाए इहदे बारे डॉक्टर हरिओम मिशाज होरां नाल कीती गल्लबात सुनाई जाएगी। कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा।

रात 8 बजे सुनोगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 9:15 बजे साढ़े दिल्ली के अंदर तो सुनोगे प्रोग्राम स्पॉटलाइट। रात 9:30 बजे सुनोगे पंजाबी नाटक सरहद। रात 10 बजे सुनोगे उर्दू मुशायरा। भाग लेने वाले शायर होंगे शोरा हजरात मोहम्मद ओवैक, रेणु नैयर, मोहम्मद अनवार आजर, डॉक्टर मोहम्मद जमील उर रहमान। रात 10:30 बजे चंद गजलां समात फरमाओगे। हिंदी पंजाबी अंग्रेजी खबरां आपो अपने समय मुताबक नशर कीतियां जाणगियां। ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਗਾਨ।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181

0: 298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मैं पापा नो सरप्राइज देंगी, बस थोड़ी जी डिटेल पढ़नी है।
4: रुक जा मुरख,
5: की अजे पॉपअप्स तो सावधान रहो, स्कैमर्स निजी वेरवियां दी दुर्वर्तों कर सकते हन।
4: ओ तू समझ गई ना, ठंड रख।
3: कर कार जीत जान देता, पापा होमवर्क नहीं करांदे।
5: RBI कहंदा है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।

लड़ीवार रेडियो नाटक होया देस पराया दी 11वीं कड़ी च तुसी सुन चुके हो कि कैनेडा च परमीत कौर ते उसके पति आर्यन ने ईशप्रीत नूं घरों कढ़ दिता है ते ओ चौधरी ते लखेबाई नाल इक फार्म दे कैबिन च रहण लग पैंदा है। हुण सुनो इस लड़ीवार रेडियो नाटक की 12वीं कड़ी।

0: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ T20 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ICC T20 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ FM ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ ਤੋਂ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
1: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 103.6 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇਲੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਸੁਣੋ ਹਿੰਦੀ ਵਾਰਤਾ। ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਏਕ ਜੀਵਨ ਪਰਿਚੈ, ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪਿਕਾ ਮਨੋਟ।
2: संसार में ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने जीवन के केवल 52 साल के अंतिम 14 साल राजनीति में बिताए हों और इसी अल्पावधि में वह महानतम ऊंचाई को छूकर इतिहास में अमर हो गए हों। ऐसे ही थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था और उन्होंने अपनी अंतिम सांस 23 जून 1953 को श्रीनगर में ली, जहां उन्हें नज़रबंद रखा गया था। भारत देश का महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक सच्चे देशभक्त, शिक्षाविद, संसदविद, राजनेता, मानवतावादी और इन सबसे बढ़कर राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के प्रबल समर्थक थे। कलकत्ता में 6 जुलाई 1901 को जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विद्वता, राष्ट्रीयता की भावना और निर्भयता अपने पिता सर आशुतोष मुखर्जी से विरासत में प्राप्त हुई, जिनका कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के नाते बंगाल में एक विशिष्ट स्थान था। युवा श्यामा प्रसाद का लालन पालन एक ऐसे वातावरण में हुआ था जहां उन्हें धार्मिक कृत्यों को देखने और अपने पिता और भारत के सभी भागों और विदेश से आए हुए मेहमानों, विद्वानों के बीच अत्याधुनिक और वैज्ञानिक विषयों पर हुई चर्चा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता था। वास्तव में इससे उनमें भारत की पुरातन संस्कृति के प्रति एक गहरी आस्था तथा पाश्चात्य विचारों और ज्ञान के प्रति एक गहरी रुचि पैदा हुई। श्यामा प्रसाद जी के व्यक्तित्व में आध्यात्मिकता, सहनशीलता और मानवीय गुण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं गहरी समझ का सुंदर समन्वय था, जो शिक्षाविद और संसदविद के रूप में उनके पूरे जीवन काल में परिलक्षित होता रहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने स्कूली शिक्षा मित्तर इंस्टीट्यूट भवानीपुर से ग्रहण की। आगे के अध्ययन के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में दाखिला लिया। वर्ष 1919 में उन्हें इंटर आर्ट्स की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और 1921 में अंग्रेजी में बीए ऑनर्स की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। परंतु राष्ट्रीयता की उदात्त भावना ने श्यामा प्रसाद जी को एमए में अंग्रेजी विषय लेने से रोक दिया और बांग्ला तथा एक अन्य भारतीय भाषा लेने पर विवश कर दिया। उन्होंने वर्ष 1923 में एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज पत्रिका का संपादकत्व उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में खींच लाया। उन्होंने 1922 में एक बंगाली पत्रिका बंगवाणी प्रारंभ की और 1923-24 में पैट लोवल द्वारा संपादित पत्रिका कैपिटल के लिए छद्म नाम से नियमित रूप से लेख भी लिखे। उन्होंने BL, D.Litt और LL.D की उपाधियां भी प्राप्त की। उन्हें 1927 में लिंकन्स इन से इंग्लिश

में बुला लिया गया। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में कलकत्ता विश्वविद्यालय का बखूबी प्रतिनिधित्व किया और तब से ही उनकी गिनती भारत के शीर्षस्थ शिक्षाविदों में की जाने लगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी को उनकी गहन अंतर्दृष्टि और शिक्षा योजनाओं तथा नीतियों की व्यापक समझ के लिए जाना जाता था। वर्ष 1924 में वह विश्वविद्यालय सीनेट और सिंडिकेट के लिए चुने गए और उन्होंने बंगाल विधान परिषद में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1930 में जब कांग्रेस ने विधान मंडलों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया तो उन्होंने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया, परंतु शीघ्र ही विश्वविद्यालय के हितों की रक्षा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पुनः विधान परिषद के सदस्य बन गए। तथापि उनका मुख्य कार्य शिक्षा क्षेत्र की सेवा करना ही रहा। वर्ष 1934 में श्यामा प्रसाद जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु के कुलपति बनने का सौभाग्य मिला और उन्हें शिक्षा के संबंध में अपने उद्देश्यों और आदर्शों को साकार करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कुलपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने दीक्षांत समारोह में बांग्ला में भाषण दिया, जो वास्तव में न केवल बांग्ला भाषी लोगों के लिए अपितु भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के प्रति समर्पित लोगों के लिए भी गौरव का क्षण था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू किए जाने के बाद हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनावों ने भारतीय राजनीति के परिदृश्य को प्रभावित किया। श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्र से पुनः बंगाल विधानमंडल के सदस्य बने और इससे उन्हें प्रांतीय स्वायत्तता के कार्यकरण का निकट से अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी अवधि के दौरान वे हिंदू महासभा में शामिल हुए। 1940 में वे हिंदू महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष बने और घोषणा की कि हिंदू महासभा का राजनीतिक लक्ष्य भारत को पूर्ण स्वाधीनता दिलाना है। नवंबर 1942 में श्यामा प्रसाद जी ने पुलिस और सामान्य प्रशासन के शासकीय कार्य के निर्वहन में गवर्नर और नौकरशाही द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप के विरोध में बंगाल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और बहुप्रचारित प्रांतीय स्वायत्तता को हास्यास्पद बताया। वर्ष 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान श्यामा प्रसाद का मानवतावादी पक्ष सामने आया। वह बंगाल राहत समिति एवं हिंदू महासभा राहत समिति दोनों संगठनों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। लोगों से धन देने की उनकी अपील का देश भर में इतना प्रभाव हुआ कि बड़ी बड़ी राशियां इस प्रयोजन के लिए आनी शुरू हो गई। वह केवल मौखिक सहानुभूति ही प्रकट नहीं करते थे बल्कि व्यावहारिक सुझाव भी देते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उन्होंने संसद में कहा था, अब हमें 40 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। मैं नहीं जानता कि भविष्य में लोकसभा के सदस्यों के भत्ते क्या होंगे। हमें स्वेच्छा से इस दैनिक भत्ते से 10 रुपए प्रतिदिन की कटौती करें और इस कटौती से प्राप्त धन को हमें अकालग्रस्त क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों के रहने के लिए मकान बनाने और खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए रख देना चाहिए। अगस्त 1947 में गांधी जी ने श्यामा प्रसाद को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बनी प्रथम राष्ट्रीय सरकार में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में उन्होंने देश में 3 अति सफल विशाल औद्योगिक उपक्रमों अर्थात चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, सिंदरी उर्वरक निगम और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री की स्थापना करके देश में औद्योगिक विकास की मजबूत आधारशिला रख दी थी। तथापि विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों के साथ बढ़ते मतभेद के कारण उन्होंने सरकार छोड़ दी। मंत्रिमंडल से हटने के पश्चात श्यामा प्रसाद जी ने अपनी शक्ति एक ऐसा राजनीतिक मंच तैयार करने के लिए लगाई जहां से वे अपने विचारों और नीतियों से लोगों को अवगत करा सकें। उनके प्रयासों के फलस्वरूप अक्टूबर 1951 में अखिल भारतीय जनसंघ की विधिवत स्थापना हुई। उन्हें इस नए संगठन का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद

0: बाद 1952 में हुए प्रथम आम चुनाव में प्रथम लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, हालांकि उनके द्वारा स्थापित दल जनसंघ के केवल दो ही अन्य सदस्य निर्वाचित हो पाए थे। लेकिन वे निराश होने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने उड़ीसा की गणतंत्र परिषद, पंजाब के अकाली दल, हिंदू महासभा तथा अनेक निर्दलीय सांसदों सहित कई छोटी छोटी पार्टियों को एक साथ लाकर संसद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल का गठन किया, जिसके वे नेता चुने गए। वे सभी उन्हें विपक्ष का मुख्य प्रवक्ता मानते थे और उन्होंने अपनी ओर से सभी प्रमुख मुद्दों का उत्तर देने का अधिकार उन्हें दिया। राजनेता के रूप में उनकी महत्ता एवं कुशाग्रता तथा देश की समस्याओं के प्रति उनके रचनात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें सरकार का दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बना दिया था। सत्तारूढ़ दल भी संसद के समक्ष आने वाले विषयों एवं समस्याओं के प्रति उनकी गहन सूझबूझ एवं विवेचना के कारण उनका सम्मान करता था। सरकार की नीतियों तथा कार्यों का उनका सूक्ष्म और मर्मज्ञतापूर्ण परीक्षण तथा उसके तर्कों का उनके द्वारा सहजता और दृढ़ता से खंडन अत्यंत विश्वसनीय प्रतीत होता था। संसद में विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका से उन्हें संसद केसरी की उपाधि प्राप्त हुई। अपने प्रभावशाली विचारों तथा अप्रतिम वाक्पटुता के कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक उत्कृष्ट सांसद बन गए। भारत और पाकिस्तान के बीच लोगों का आवागमन, भारत की विदेश नीति, निवारक नज़रबंदी, चुनाव सुधार आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर संसदीय वाद विवाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस महान राजनेता के संसदीय जीवन का अंतिम कार्य वर्ष 1953 में संपन्न हुआ। उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर प्रजा परिषद के मुद्दे को उठाने का निर्णय किया। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने के प्रति उनका उत्साह इतना प्रबल था कि अस्वस्थ होने के बावजूद वह तुरंत जम्मू चल दिए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वह जेल में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और भारतीय एकता के लक्ष्य के लिए 23 जून 1953 को उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संयुक्त भारत के हितों के लिए लड़ने वाले अग्रणी योद्धा थे, जिसने आजीवन उत्साहपूर्वक इनकी हिमायत की। संसद, राज्य विधानमंडलों, प्रेस एवं दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी नेताओं ने उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया और इसे महान क्षति बताते हुए जीवन पर्यंत अपनी मातृभूमि की सेवा में समर्पित रही इस महान आत्मा को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्कालीन प्रधानमंत्री और सदन के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस सभा की महानतम विभूतियों में से एक और विपक्ष का एक ऐसा नेता बताया जिसने इस सभा की कार्यवाही में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हुणे तुसी हिंदी वार्ता सुन रहे सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक जीवन परिचय। वार्ताकार सन डॉक्टर रूपिका मनोट। आकाशवाणी दा ए जुलंधर केंद्र है।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

आओ दोस्तों, प्रोग्राम जिंदगी हसीना का आगाज करते हैं। और जिंदगी कि नाम है, जिंदगी है एक उम्मीद जिदे सहारे सारी दुनिया कायम है और असी भी कायम है। एक उम्मीद नु देख के सानू अगे वधना पैंदा है, क्योंकि जिथे उम्मीद जीउंदी है उत्थे राह अपने आप निकल आंदे ने। हर रोशनी सामने आ जाती है, रस्ते खुलते जाते हैं, तो उस रोशनी नु पाण वास्ते सानू अपने आप दे अंदर अपनी रोशनी पछाड़ना पैना है कि दुनिया आप चमकन लग पैंदी है। किसी गलती तो, किसी रुकावट तो हार के बैठना नहीं चाहिए, बल्कि उस रुकावट तो, उस हार तो सानू सिख लैके अगे वधना चाहिए है। और अगे वधदे हुए हमेशा चंगे विचारां दे नाल, सकारात्मक सोच दे नाल सानू अगे वधदे रहना चाहिए है, क्योंकि जिहड़े सकारात्मक सोच है वह साडी जिंदगी दी नींह हुंदे और नींह नू बड़ा मजबूत बना के रखते हैं। अज अगर समा औखा है तो समा बदलता है, समा बदलेगा, इसलिए माड़े दिनों तो ना डरो, दिन वधिया आणगे। हर वेले हर औखे वेले मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराहट जिहड़ी है वह हर समस्या का पहला हल हुंदी है। और जिंदगी का दूजा नाम ही संघर्ष है। जे अज संघर्ष है तो कल कामयाबी जरूर आएगी और आदा आनंद सानू जरूर मिलेगा। और दोस्तों, प्रोग्राम जिंदगी हसीना का आगाज करते हैं इस गीत तो, जिसनु गाया अमित कुमार ते अनुराधा पौडवाल ने। फिल्म का नाम है तेजाब।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

आकाशवाणी के अंदर सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी का दूसरा नाम ही है मेहनत, उम्मीद, एक रोशनी जिहड़ी कि हमेशा सानू अगे वल लैके चलती है, क्योंकि जिंदगी जिहड़ी है वह एक किताब की तरह है। हर रोज़ सानू एक नवा पन्ना पढ़न नू मिलता है, उस पन्ने तो कुछ सीखन नू मिलता है। हाँ, जेकर कोई रुकावट आ जावे, किसी मुश्किल नाल असीं रुक जाइए, तो वह कोई माड़ी गल नहीं है, क्योंकि डिगना माड़ी गल नहीं, पर डिग के ना उठना वह गलत गल हुंदी है। हर एक रुकावट तो, हर एक औकड़ तो सानू कुछ ना कुछ सीख के अगे वधदा रहना चाहिए है, और हमेशा एक उम्मीद जगा के रखनी चाहिए है सकारात्मक सोच दे नाल, और अपने आप ते पूर्ण विश्वास लेके चलना चाहिए है, क्योंकि विश्वास अपने आप ते होवे ता किस्मत भी साथ देण तो पिछे नहीं हटती। जी हाँ दोस्तों, कामयाबी उन्होंने मिलती है जो हमेशा मेहनत और कोशिश करते रहते हैं। जी आप अपना कल बेहतर बनाना है तो सानू अज पूरी मेहनत और पूरी तवज्जो नाल उन्हूं जीना पेगा। आओ दोस्तों, प्रोग्राम नू अगे वधाउने हैं, और अगला गीत तुहाडे लई त्रिदेव फिल्म तो इस गीत नू गाया है सपना अवस्थी ते अमित कुमार ने।

इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर के उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: आकाशवाणी जलंधर ते सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है ते प्रोग्राम विच अगला गीत है जी तुम्हारी कसम फिल्म तो। इस गीत नु गाया है मुकेश ते आशा भोसले ने।

आशा भोसले ते मुकेश दे गाए तुम्हारी कसम फिल्म दे इस गीत दे नाल ही अज दा प्रोग्राम जिंदगी हसीने इत्थे खत्म करन दी दिओ इजाजत। आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र हुण तो कुछ ही पलां विच साडे दिल्ली केंद्र तो यानी 9:45 बजे सुनोगे समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ @9 ते रात 9:15 बजे सुनोगे स्पॉट लाइट।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग

0: करने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। पूर्व मुख्य सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सके।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को अदन्य

0: मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
2: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
3: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण

0: उत्पन्न खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 टाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आ गया अपना घर।
1: पहुंच गए, शुक्र है मालक दा।
0: लगदा जहाज दे सफर च बाबा बेराम रहे, ताही ता हवाई अड्डे तुरन सारी लगी तुहाडी अख हुण खुली है किते जाके।
1: ओ विसाखा सिया, पहुंच गए हां ते हुण उतरनो ते नहीं रह चले।
0: लम्मे सफर दे थके पन्ने आयो, हुण ए दसो पहला स्नान पानी करना के चाह पानी छकना?
1: ओए घड़ी गुस्सा लै विसाखा सिया, इस तरह कर इशनान पानी ते हाली रहन दे, ए ते करांगे राती मंजा मलन तो पहला, हाले चाह प्याज रख कैड़ी जी।
0: जिद्दां तुहाडी मर्जी, तुसी आए करो हाले इस कुर्सी ते बह के लत्तां सिद्धियां करो ते मैं गुरमीत कौर नूं चाह तरन लई कहना।
2: मत्था टेक दियां भाईया जी, आ गए सुखी सांदी।
1: ज्योंदी रह बीबी ज्योंदी रह।
2: साडी भाबू राणी नूं वी नाल ले आउंदे, ओहदे नाल वी मेले गेले हो जांदे किते, लाली दे व्याह वेले दे दर्शन होए आ उहनां दे।
1: सारिआं दा आ के किथे सरदा गुरमीत कौरे, तूं आप सियाणी है, मुंडा ते वहुटी आपो अपने काम धंधिआं ते चले जांदे आ, ते मगरों उहनां न्याणिआं नूं वी ते सांभणा संभालणा होइआ ना।
2: आ गल तां ठीक कहिंदे आ भाईआ जी तुसीं।
0: तूं ऐ कर चाह बणा छेती, दुध जी पत्ती पा लई, मैं जरा लुधियाणे होके आउणा, आ के सुनदिया फिर सरजी तो कनेडा दे किस्से काड़ काड़ कर दे।
1: घर आला अपना पासा भी तुसी आ वेल बूटे ला के वाहवा शिंगार लिया, बई मैं तो विसाखे नूं घर दियां चाबियां देंदिया इसनों अपने घर वांग ही संभालण दी तकीद कीती सी। बंद पए घर तां खोले ही बन जांदे आ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲੋੜਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ।
2: ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਭਾਈਆ ਜੀ।
1: ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਠੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਚੜ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕੁੱਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਰੋ ਪਿਆ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਆ ਬਾਹਰ ਬਗਾਨੀ ਤੀਵੀ ਸੁਣੂ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪਊ। ਆਹੋ ਬਾਲਾ ਚਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਐਸੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਦੇ

0: हां बेअंत करे लै ले कनेडा वाले जहाज दे झूठे बड़ा चा चढ़िया होया सी।
1: लै मैनू कल्ली नू चा चढ़िया होया सी भला, दिना दी ही गल आ, समा पा के सब कुछ ठीक हो जाना है। नाले तुसी देख दे रहे हो, असी भावे भूल जाइए पर उस मालक नू सब दा ख्याल आ, उस दा नाम लिया करो नाले उस दा ध्यान धरिया करो।
2: वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, किहो जिहा सुपना सी। धान्या भी मालका, मंजे उत्ते पए शरीर नू भी अपने नाल तोर लैना, तू सच्ची धन है। मैनू लगता है सवेर होण वाली है।
3: लगता भाइया जी की भी अख साजरे ही खड़ गई है, लगता है तुहानू नींद नहीं आई भाइया जी चज नाल, है ना।
2: उत्थे ते इत्थे दा दिन रात दा वी तां फर्क है ना गुरमीत कुरे, कनेडे ते हुण तकालां पईआं होणगीआं, हुण दिन चढ़दिआं नींद आऊगी।
3: ना कोई ना, तुसीं पए रहो, इत्थे कहिणा तुसीं कोई काम कार करना, है ना, तुसीं अपनी नींद पूरी करिओ दा नाल।
2: ओ बई गुरमीत कौरे, उधरले टाइम चो निकलण लई तीन कु दिन ते लग ही जाणगे, अज माड़ा मोटा तुर फिर के दिने लम्मा ना पिआ तां रात नूं नींद आ ही जाऊ, इंजी गेजड़ा पाउणा पैणा।
3: आहो गल तां ठीक कहिंदे हो तुसीं, तुसीं कुरली कर लो, मैं चाह लै के आउंदी आं।
2: ड्राइवर साहब उठे ने कि नहीं हाले?
3: नहीं, वो तां कदों दे निकल गए खूह ते गेड़ा मारन, हुण बाहरों दातन करके ही मुड़ूगा ड्राइवर साहब। एक गल आ, राती जदों मर्जी सौवे उठू टिक्की चढ़न तो पहला, कई वारी किसी सवारी ने भी साजरे आने लई कहा हुंदा मैं चाह धर दी आं जद तक शायद आ ही जावे, लो आ ही गए।
4: जाग पे मेरे सर जी मास्टर जी सरकार।
2: सुत्ते कदों सी तुहाडे सर जी मास्टर जी सरकार?
4: क्यों जी, साडी टहल सेवा च कोई ढेला जां?
2: ओए इन्ने साल हो गए तेनू बाहरलियां सवारियां एयरपोर्टां तों ढोंदे नू, अजे तेनू उहनां दे बेराम रहण दी वजह दा इलम ही नहीं होया?
4: ना सर जी, कोई चानण पाऊ तां ही इलम होऊ।
2: गल सुण, तूं कदे किसे बाहरली सवारी दे मुँहों जेट लैग जां इस वर्गा कोई लफ्ज कदे नहीं सुणिया?
4: हाँ, जट लग कहते तो मैं 20 बारी सुने हुए हाँ, पर यह है कि इस उत्ते चानण किसे ने नहीं पाया कदे। मैं इसनू लाग डाट वर्गी कोई गल ही समझदा रहना, क्योंकि जट्टां दी किसे नाल लाग डाट की गल रहिंदी होवे। ड्राइवर सामने खोलण तो रहे, चलो हुण तुसी तां अपने बंदे हो, तुहाडी भी किसे नाल जट लग गया।
2: ओए भोलिया, जट लैग दा जट्टां दी आपसी लाग डाट नाल दूर तक दा भी वास्ता नहीं।
4: फिर जहाजा चो उत्तर दी बलैतीए इदां दा जाप क्यों करन लग पैंदे आ सर जी?
2: तूं हुण 3 दिनां बाद पुछी, हुण तूं मैनूं घड़ी को अख ला लैण दे।
4: चंगा जी।
5: ला देख ला भी मास्टर, आ तू कुड़ी दे मंगने दी खबर वांगू आ गुरलाल दे पक्का कनेडे वाला बनन दी खबर भी साडे ते लुको ही लई है।
2: वाह धर्म सिंह, कुदरती आ जिहड़ी मैनूं तुहाडा गुनाहगार बनाई जांदी है। मैं तां सवेरे सब तों पहलां तुहाडे नाल इह खबर सांझी करन दा इरादा कीता सी। चल कोई ना, इस खबर नाल इक होर खबर मैं जोड़ दिंदा।
5: अच्छा जोड़ जोड़, कर दे खुशी दुगनी।
2: सरदार गुरलाल सिंह दे देख दिखाले भी शुरू हो गए आ, ओनू भी रिश्ते आने लग पे। हरप्रीत का फोन आया सी।
5: लै ओ मास्टर, आ तो तू मेरे मुंह की गल खोली, जे मैं रिश्ते की दस पाव तो की ख्याल है तेरा? आ कुड़ी अपने रिश्ते बिचू ही हाँ, इस साल MA की थी उन्हें।
2: भा धर्म सिंह, उदा कहिंदा तो यह हो रहा है मे कुड़ी तो पंजाब च ही देखूगा।
5: अच्छा
2: हूँ बदल ना गया हो, तो यह भी कहिंदा रहा है कि किसी गरीब की लैक धी नू लड़ लाना चाहिए, पैसे आलियां दा तां रब ही रख है। एक दिन कहिंदा, डैडी आ ताया जी तुहाडे नाल वट्टे वट्टे जे रहिंदे आ, मैं उहनां नूं फिर अपने बनाउण खातर उहनां वल्लों लिआंदा साक वी लैण दे हक च आ। शरीक होण दा अर्थ कहिंदा दुश्मन होणा नहीं है, शरीक तां अड़दे थुड़दे विच नाल खड़न वाला बंदा हुंदा है।
5: शाबाश भाई, फिर तां वधिया सोचदा अपना गुरलाल सिंह।
2: हर वार मैं जदों वी आया मैनूं कहिंदा, ऐतकी जमीन ताया जी होरां नूं दे के आयो, तुम ताया कोई चज नाल गल करे तां ही है ना।
5: लै ओ इन्नी क गल तां करनैल च होना ना, मैं करके देख लूं, ओ सियाणा बंदा है।

0: गल सुनूंगा तो कोई जवाब भी दूंगा लाजमी।
1: बाहर जान वालियां से लगता रहिंदा रिश्ते तोड़न दा इल्जाम, बाहरों आके टुटियां गंढण दा हीला करन नाल शायद किते पुरानियां धारनावां दे धोने धोते ही जान। पा धर्म सिंह
0: भाई सगिया भरावां दा बचालड़ा पाड़ा पूरन विच आ बिचोलगिरी करके मैं एक नवा साग दा बिठण ही लगा। मैं करनैल सिंह नूं आ गुरलैल सिंह दे दिल दीआं गल्लां भी सुणाऊंगा।
1: भाई वाह, जे तुहाडे वर्गे भैण भरावां दे सहयोग नाल ये हीला सिरे चढ़ जावे तां साडा प्यो पुत दा चिरोकणा सुपना साकार हो जावे।
2: भाईया जी, ओ भाईया जी, उठो भी, हुण तां लोडा वेला हो गया।
3: हां, अच्छा लोडा वेला भी हो गया
2: ते होर की, 4-5 घंटे तुसी गुड़ी नींदे सुते हो। मैनू तां लगदा मैं तुहानू जगा के ना कोई सुपना तोड़ता तुहाडा, समझ तो नहीं आई पर तुसी ना सुपने च किसे ना गल्लां करदे पए सी।
3: हाँ भाई गुरमीत, अज सुपने आए भी बहुत, कहिंदे है भई दिने आए सुपने सच्चे हो जांदे है।
2: हाँ ये गल सियाणे तो सुनी तो बड़ी वार है, रब करे तुहाडे भी अज लए सुपने सच हो जाण। मैं चाह लई पानी धर के आई हाँ, चाह बना लिया वा, फिर आपां चाह पींदे पींदे गल्लां करांगे। तुसी भी तद तक ना अखां ते चिट्टे मार लो पानी दे।
3: चंगा भाई।

0: कबासट कनेडा तो आया।
1: बाकी कागज तो अंग्रेजी विच है, वो तो चलो बाद च पढ़ लांगे। पंजाबी विच एक हत्थी लिखी चिट्ठी च धी हरप्रीत कौर ने लिखा भी तुहाडे नूं पुत दा आपसी झगड़ा निपट गया। चलो शुक्र होया। झगड़े की जड़ यह सी भई देखा दिखाली वेले मुंडे ते कुड़ी विचाले होई लम्मी गलबात विच ये रिश्ता सिरे चढ़ाउण विच ये शर्त मिथी गई सी भी विआह तो मगरों ना मुंडा अपने मापियां नूं कनेडे सद्दण दी अड़ी करूगा ते ना ही कुड़ी अपने मापियां नूं कनेडे सद्दण दी जिद करूगी।
0: ना ही शर्त मन्नण वेले लाली नूं इस गल दा ख्याल ना आया तां हुण इस लफाफे विच आए कागज़ां दे थब्बे विच की है फिर?
1: वो भी पता लग जाऊ। पहला ये तो सुन लै भी अपने लैक नूं पुत दा आपसी राजीनामा किदां होया।
0: हाँ सच, वो किने कराया ते किदां होया?
1: इत्थे काम आई साडी दानी सियाणी धी हरप्रीत दी अकल।
0: सच्ची?
1: हाँ, उसने झगड़े की वजह समझ के एक दिन दोवां जणियां नूं अपने घर चाह ते सद लिया। हरप्रीत ने उन्हां नूं कहा कि दोवें ही अपने माँ प्यो नूं ना सद्दण, पर मैनू तो अपने मापियां की लोड़ है ना, तो मैं आप ही उन्हां नूं राहदारी भिजवा देंगी अपने वालों।
0: फिर
1: की? हरप्रीत ने आपां नूं सद्दण लई इस लफावे विच कागज भेजे। सो हुण जे आपां कदे भी कनेडे गए तो अपने नूं पुत दी कोठी विच नहीं अपनी धी दे घर विच रहांगे।
0: हाय मैं मर जां।
1: मास्टर जरनैल सिंह, तू अपने मुंडे दे व्याह ते अपने भरा करनैल सिंह नूं आप सद के दोहां परिवारां विचाले बन गई सरहद मिटा दित्ती सी। हुण जिंदगी ने तेरे ते तेरे पुत्र विचाले जिहड़ी सरहद बना दित्ती है ओए उस नूं कौण मिटाएगा? जिंदगी दा इह सवाल भी हल करके दिखाओ मास्टर जरनैल सिंह जी।

रात 10 बज रहे ने, पेश ने मुख खबरां। उत्तर प्रदेश के लखनऊ च एक कोचिंग सेंटर विच भयानक अग लगन कारण 15 लोगों की मौत हो गई है, जिन्हां विचों ज्यादातर विद्यार्थी सन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री ने दुखांत ते दुख प्रगट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 साल दौरान कीतियां गईयां तब्दीलियां ने शासन ते प्रशासन विच जनता दे विश्वास नूं मजबूत किया है। शिवसेना नेता अते महाराष्ट्र दे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि शिवसेना यूटीबी धड़े दे 6 लोकसभा संसद मैंबर शिवसेना विच शामिल हो गए ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अज उलान बातर विच मंगोलिया दे राष्ट्रपति पुरेल सुख उखड़ा नाल मुलाकात की। बरतानिया प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री अते लेबर पार्टी दे नेता वजों अस्तीफा देण दा ऐलान किया है। बीजेपी दे कौमी प्रधान नितिन नवीन ने कहा, पश्चिमी बंगाल की तरह पंजाब की माड़ी कानून व्यवस्था, गैंगस्टरवाद अते

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लाहौन समात फरमाओ उर्दू मुशायरा। भाग लैण वाले शायर होणगे डॉक्टर जमीलुर रहमान, मोहम्मद ओवैसी, मोहम्मद अनवर आजर ते रेणु नैयर।
1: आदाब सामईन, ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में आज हम इकट्ठे हुए हैं एक बहुत ही खूबसूरत मुशायरे के लिए। ऑल इंडिया रेडियो के सभी दोस्तों का खैर मकदम करते हुए, सभी दोस्तों का स्वागत करते हुए आज मैं जिन शोरा हजरात से आपको रूबरू करवाना चाहती हूँ, उनमें से सबसे पहले हमारे पास हैं ओवैस ओवैसी, मलेरकोटला से आए हैं। और उसके बाद हैं हमारे साथ एक उस्ताद शायर हैं मलेरकोटला से ही, अनवार आज़र साहब, जिनका तखल्लुस है बुत तराश। उनसे कुछ उनके तराशे हुए शेर सुनेंगे। और मैं खुद हूँ रेनू नैयर, मैं जालंधर से ही हूँ। और हमारे आज के जो मेहमान खुसूसी हैं वो डॉक्टर जमील अज़ीज़, जो MLA हैं मलेरकोटला से ही। दोस्तों, मैं मलेरकोटला का नाम बार बार इसलिए भी ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मलेरकोटला को शायरी का बहुत खूबसूरत वरदान मिला हुआ है। तो आज ऐसी हमारी किस्मत है, इस स्टूडियो की किस्मत है कि हमारे साथ सारे ही दोस्त मलेरकोटला से इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले जो मैं दावत देने जा रही हूँ, अपना कलाम सुनाएंगे ओवैस ओवैसी साहब।
2: उस्ताद मोहतरम की इजाज़त से एक गज़ल के चंद अशार। ये नहीं कि तुझको खबर ना हो को मेरी दुआ कोई और है।
3: वाह वाह।
2: ये नहीं कि तुझको खबर ना हो कि मेरी दुआ कोई और है, तेरे देने पे मैं समझ गया तेरी रजा कोई और है।
4: वाह वाह वाह, क्या बात है।
2: तेरे देने पे मैं समझ गया, तुझको खबर ना हो कि मेरी दुआ कोई और है, तेरे देने पे मैं समझ गया कि तेरी रजा कोई और है। एक शेर देखिए, मुझे दे रहा था तबीब जो वो मेरे मर्ज की दवा न थी।
4: मेरे मर्ज की दवा,
2: मुझे दे रहा था
3: तबीब जो
2: वो मेरे मर्ज की दवा न थी, उसे उम्र भर न मगर कहा कि मेरी दवा कोई और है।
4: वाह वाह, क्या बात है।
2: मुझे दे रहा था तबीब जो वो मेरे मर्ज की दवा न थी, उसे उम्र भर न मगर कहा कि मेरी दवा कोई और है। एक शेर देखे कि मैं चला हूँ जिसकी तलाश में, वो मेरी नजर से है गुम अभी।
4: वो मेरी नजर से है गुम अभी।
2: मैं चला हूँ जिसकी तलाश में, वो मेरी नज़र से है गुम अभी। मैं हूँ ढूंढता किसी और को, मुझे मिल रहा कोई और है।
4: मुझे मिल रहा कोई और है।
2: मैं चला हूँ जिसकी तलाश में, वो मेरी नज़र से है गुम अभी। मैं हूँ ढूंढता किसी और को, मुझे मिल रहा कोई और है। मुझे कैसे आए यकीन भला मेरे चारागर तेरे प्यार पर।
3: मुझे कैसे
2: आए यकीन भला मेरे चारागर तेरे प्यार पर। तेरे लव पर बातें हैं और कुछ जो है वाकया कोई और है।
3: तेरे लव पे बातें हैं और कुछ।
2: मुझे कैसे यकीन भला मेरे चारागर तेरे प्यार पर। तेरे लव पर बातें हैं और कुछ जो है वाकया कोई और है। वो तो जिंदगी की तलाश था, तुझे क्या मिलेगा वैस वो।
3: वाह वाह वाह वाह।
2: वो तो जिंदगी की तलाश था, तुझे क्या मिलेगा वैस वो। यहाँ सोग है किसी और का, चला गया कोई और
3: जो चला गया।
1: वाह वाह वाह।
2: वो तो जिंदगी

0: की तलाश था, तुझे क्या मिलेगा वैस वो। यहाँ सोग है किसी और का,
1: जो चला
0: जो
1: गया
0: चला
1: वो
0: गया
1: चला
0: कोई
1: गया,
0: और
1: कोई और
0: है।
1: है।
0: ये नहीं कि तुझको खबर ना हो, को मेरी दुआ कोई और है। तेरे देने पे मैं समझ
1: कि
0: गया कि तेरी
1: तेरी
0: रजा
1: रजा
0: कोई
1: को।
0: और
1: वाह
0: है।
2: वाह
0: क्या
2: वाह,
0: बात
2: बहुत खूब
0: है
2: बहुत खूब
0: दोस्तों, अभी आपने
2: बहुत
0: ओवैस ओवैसी साहब से गजल सुनी है, बहुत खूबसूरत कलाम था इनका। और हम अगली दावत जो देने जा रहे हैं, उस्ताद शायर अनवार आज़र साहब बुत तराश, अभी इनसे आप सुनिए और आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि क्या खूबसूरत गज़ल ये भी तराशते हैं। जी सर
1: गज़ल का आप मुलाहज़ा फरमाएं
0: जी,
2: अता कीजिए साहब,
1: कि जब से लहू की मौज को,
2: कि जब से लहू की मौज को,
1: जब से लहू की
2: की
1: मौज
2: मौज को
1: को पानी बना लिया,
2: पानी बना लिया। वाह वाह
1: जब
2: वाह,
1: से
2: जब से
1: लहू
2: लहू
1: की
2: की
1: मौज
2: मौज
1: को
2: को
1: पानी
2: पानी बना
1: बना
2: लिया,
1: लिया, इस जिंदगी को रात की रानी
0: रानी
1: बना
0: बना
1: लिया,
2: इस जिंदगी
1: वाह
2: को रात की
0: क्या
2: रानी
0: कहने,
2: बना
1: रानी
2: लिया।
1: बना
2: वाह
1: लिया,
2: वाह वाह, बहुत
1: और
2: खूब बहुत
1: आंखें
2: खूब।
1: किसी की होंठ किसी के, किसी की जुल्फ,
2: आंखें किसी की होंठ
1: हो
2: किसी के,
1: आंखें
2: किसी
1: किसी
2: की
1: की
2: जुल्फ,
1: होंठ किसी के, किसी की जुल्फ,
2: जुल्फ
1: यूं हमने आखरस तेरा सानी
2: तेरा
1: बना
2: सानी
1: लिया।
2: बना
1: क्या
2: लिया।
1: मिसरा
2: वाह
1: है,
2: वाह
1: वाह वाह
2: वाह वाह
1: वाह
2: वाह
1: यूं
2: वाह
1: हमने
2: वाह,
1: आखरस
2: क्या
1: तेरा
2: कहने हैं,
1: सानी
2: सानी
1: बना
2: बना
1: लिया,
0: लिया, क्या कहने।
1: और जुल्फें गिरा के चांद से चेहरे पे जाने मन, जुल्फें
2: जुल्फें
1: गिरा
2: गिरा के
1: के
2: चांद से चेहरे पे
1: चांद
2: जाने
1: से
2: मन,
1: चेहरे पे जाने मन, तूने तो दिन को रात सुहानी बना लिया।
0: वाह वाह वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह, तो
1: जुल्फें
2: दिन को
1: गिरा के
2: रात सुहानी बना
1: चांद से
2: लिया,
1: चेहरे पे जाने मन, तूने तो दिन को रात
0: रात सुहानी
1: सुहानी बना
0: बना ली।
1: लिया। और तारीफ हमसे क्या हुई शाखे गुलाब की,
2: तारीफ हमसे
1: तारीफ
2: क्या
1: हमसे
2: हुई
1: क्या हुई
2: शाखे
1: शाखे
2: गुलाब
1: गुलाब की,
2: की,
1: उस गुलबदन को दुश्मने जानी बना लिया।
0: वाह
1: क्या
0: क्या
1: कहने,
0: बात है,
1: तारीफ
0: क्या बात
1: हमसे
0: है,
1: क्या
2: क्या बना
1: हुई
2: लिया
1: शाखे
2: गुलाब
1: गुलाब की,
2: की
1: उस गुलबदन को दुश्मने जानी
2: जानी
1: बना
2: बना
1: लिया।
2: लिया। बहुत खूब बहुत खूब,
1: उस
2: वाह।
1: चेहरे दिलवा से अगर दर्द भी मिला,
2: शहरे
1: उस
2: दिलवा
1: चेहरे
2: से
1: दिलरुबा से अगर दर्द
2: दर्द
1: भी
2: ही
1: मिला,
2: मिला,
1: हमने उसे किसी की निशानी बना
0: वाह वाह
1: लिया।
0: वाह वाह, क्या
2: वाह वाह
0: खूबसूरत
1: वाह,
0: शेर
1: क्या
0: है,
1: बात,
0: वाह वाह, फिर
1: शहरे
0: पढ़िए सर, फिर
1: दिलरुबा
0: पढ़िए।
1: से, उस शहरे दिलरुबा से अगर दर्द भी
2: दर्द
1: मिला,
2: भी मिला
1: हमने उसे किसी की निशानी बना
2: निशानी बना
1: लिया।
2: लिया।
1: आदर ये फासले तो कोई बात ही न थे,
0: वाह वाह वाह,
1: आदर
2: आदर
1: ये
2: ये
1: फासले
2: फासले तो
1: तो
2: कोई बात
1: कोई बात ही न थे,
0: ही
1: जिन फासलों को तुमने कहानी
2: न थे।
1: बना
2: वाह
1: लिया।
0: वाह क्या
1: क्या
0: बात,
1: कहें,
0: क्या
1: आदर ये
2: बात,
1: फासले तो कोई बात ही
2: बात
1: न
2: न
1: थे,
2: थे,
1: जिन फासलों
2: फासलों
1: को
2: को
1: तुमने
2: तुमने
1: कहानी
2: कहानी
1: बना
2: बना लिया।
1: लिया, जब से लहू की मौज को पानी बना लिया, इस जिंदगी को रात की रानी
2: रात
1: बना
2: की रानी
1: लिया।
2: बना लिया।
0: क्या
2: वाह
0: कहने,
2: वाह,
0: क्या
2: क्या कहें।
0: खूबसूरत गज़ल हम सबको सुनने को मिली है। और आप सभी दोस्तों से इजाज़त लेके मैं अब अपनी गज़ल एक पढ़ना चाहती हूँ,
2: जी, इरशाद
0: इजाज़त
2: कीजिए,
0: जी।
2: इरशाद।
0: जी मतलब देखिएगा कि किसी जर्रे को जैसे रोशनी उम्मीद देती
1: देती
0: है,
1: है
2: किसी जर्रे को जैसे रोशनी उम्मीद देती है,
0: किसी जर्रे को जैसे रोशनी उम्मीद देती
1: उम्मीद
0: है, मुझे वैसे तेरी मौजूदगी उम्मीद
2: उम्मीद
0: देती
2: देती है।
0: है।
2: वाह
1: वाह
2: वाह
1: वाह,
2: वाह,
1: क्या
2: क्या
1: बात
2: बात,
1: है,
2: बहुत खूब बहुत खूब।
1: मुझे
2: और
1: वैसे
2: शेर
1: तेरी मौज
0: देखिए कि
2: अता
0: फिर
2: कीजिए,
0: उसके बाद का रास्ता बची सांसों से पूछेंगे,
2: फिर
1: क्या बात है,
2: उसके
0: फिर
2: वही
0: उसके
2: बाद का
0: बाद का
2: रास्ता
0: रास्ता
1: बची
0: बची
2: बची
0: सांसों
2: सांसों
0: से
2: से
0: पूछेंगे,
2: पूछेंगे,
0: वहां तक चल जहां तक जिंदगी उम्मीद देती
1: वाह
0: है,
1: वाह वाह वाह,
0: फिर
1: क्या क्या
0: उसके
2: बात है,
0: बाद का रास्ता
1: बची
0: बची
2: सांसों बची
0: सांसों से
2: सांसों से
0: पूछेंगे,
1: पूछेंगे,
0: वहां
1: वहां
0: तक
1: तक चल
0: चल जहां तक जिंदगी उम्मीद
2: उम्मीद
0: देती
2: देती
0: है।
2: है।
0: और मुझे तो आज तक भी गम तेरा ढारस बंधाता है,
1: क्या
0: वाह
1: बात
0: वाह,
1: है, वाह
0: मुझे
1: वाह वाह,
0: तो आज तक भी गम
1: गम
0: तेरा ढारस
2: बंधाता
0: बंधाता है,
2: है,
0: मुझे तो आज तक तेरी कमी उम्मीद देती
1: वाह
0: है,
1: वाह वाह वाह,
0: मुझे
2: क्या
0: तो
2: कहें,
0: आज तक
2: वाह,
0: भी गम तेरा ढारस बंधाता
2: बंधाता
0: है,
2: है,
0: मुझे तो आज तक तेरी कमी उम्मीद
2: उम्मीद
0: देती
2: देती
0: है।
2: है।
0: और शेर है कि दुपट्टे के किसी कोने में जो एक गांठ बांधी थी,
1: वाह वाह वाह वाह
0: दुपट्टे
1: वाह,
0: के किसी कोने में जो एक गांठ बांधी
1: उम्मीद,
0: थी, मुझे वो अभी तेरे नाम की उम्मीद देती
1: वाह
0: है।
1: वाह वाह
0: और
1: वाह
0: शेर
1: वाह,
0: है कि किन्हीं सहरा सिफत आंखों से जाकर पूछ लेना तुम, किन्हीं सहरा सिफत आंखों से जाकर पूछ
2: पूछ लेना
0: लेना तुम,
1: तुम,
0: उन्हें तो ओस की एक बूंद भी उम्मीद
1: उम्मीद
0: देती
1: देती
0: है,
1: है,
0: उन्हें
2: वाह वाह,
0: तो ओस की एक बूंद भी उम्मीद देती
2: उम्मीद
0: है। और
2: देती
0: आखिरी
2: है।
0: शेर मेरी गजल का के
1: फकीरी
0: फकीरी रास जिनको आ गई हो कब ठहरते हैं,
2: रास जिनको आ गई हो कब
1: कब
2: ठहरते
1: ठहरते
2: हैं,
1: हैं,
0: फकीरी रास जिनको आ गई हो कब ठहरते हैं, किसी से रुखसती उनको नहीं उम्मीद देती
1: वाह
0: है,
1: वाह वाह
0: फकीरी
1: वाह,
0: रास जिनको
1: जिनको आ
0: आ
1: गई
0: गई

0: कि वो कब ठहरते
1: हैं,
0: किसी से रुखसती उनको नई उम्मीद देती है, फिर उसके बाद का रास्ता बची सांसों से पूछेंगे, वहां तक चल जहां तक
2: जिंदगी मालूम होती है।
0: बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। और मैं अगला नाम जो लेने जा रही हूँ वो है आज के हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर जमील अजीज साहब। ये MLA हैं और राजनीति में शायरी और शायरी में राजनीति का एक बहुत सुंदर जो एक गठबंधन है वो हमें आज यहाँ पे भी सुनने को मिलेगा। जी सर, आपकी गजल इरशाद।
3: गजल का मतलब पेशी खिदमत है
0: जी।
2: इरशाद।
3: कोई महरम कोई हमदम नहीं है।
2: कोई महरम कोई हमदम नहीं है।
3: कोई अपना शरीके गम
2: नहीं है।
3: कोई महरम
2: कोई
3: हमदम नहीं है। कोई अपना शरीके गम नहीं है। खुदा शैतान से महफूज रखे। खुदा शैतान से महफूज रखे मगर इंसान भी कुछ कम नहीं
0: है। हाय क्या बात है।
3: खुदा शैतान से महफूज रखे मगर इंसान भी कुछ कम नहीं है। हम उनको दफन करके लौट आए हैं।
2: हम उनको दफन करके लौट आए हैं।
3: बिछी अब तक सफे मातम नहीं है।
2: लौट आए
3: हम उनको दफन करके लौट आए। बिछी अब तक सफे मातम नहीं है। किसी मफलूक की मैयत है शायद। किसी की आंख भी पूर्णम नहीं। किसी मखलूक की मैयत है शायद। किसी की आंख भी पूर्णम नहीं है। जमाना हमसे टकराए तो कैसे। जमाना हमसे टकराए तो कैसे। जमाने में भी इतना दम नहीं है। जमाने में भी इतना दम नहीं है। हमें तो साफ गोई की है आदत। हमें तो साफ गोई की है आदत। हमारी गुफ्तगू मुभम
2: नहीं है।
3: हमारी गुफ्तगू मुभम नहीं है। जमाना जिसे चाहे रौंद डाले। जमाना जिसको चाहे रौंद डाले। हमें मंजूर ये आलम नहीं है।
0: क्या कहने।
3: कोई महरम कोई हमदम नहीं है। कोई अपना
2: शरीके गम नहीं। वाह वाह वाह
0: डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत गजल। और आइए दोस्तों एक बार फिर से हम एक एक गज़ल और सुनते हैं अपने यहाँ से जो हमारे साथ शोरा हजरात हैं। तो मैं एक बार फिर से दावत दे रही हूँ ओवैस ओवैसी साहब को कि अपनी ये गज़ल हमें सुनाएं।
4: गज़ल का मतलब है कि जो ताक में दुश्मन थे पुराने निकल आए।
3: जो ताक में दुश्मन थे पुराने निकल आए।
4: उठे जो जरा लोग गिराने ताक में दुश्मन थे पुराने
2: निकल आए। उठे
4: जो जरा लोग गिराने निकल आए।
0: क्या बात है।
4: और शेर देखिए, हमने कभी फुर्सत में कहा खुद को है रखा। हमने कभी फुर्सत में कहा खुद को है रखा। आया जो कोई काम कराने निकल आए।
0: क्या बात है।
2: वाह, ये तो जमील साहब के बारे में लग रहा है। हमारे MLA साहब के बारे में,
4: ये हमारे MLA साहब की नजर है। हमने कभी फुर्सत में कहा खुद को है रखा। आया जो कोई काम कराने निकल आए। और शेर देखिए, महफिल में शमा आग बनी जब हुई वारित।
3: महफिल में शमा आग बनी
4: जब हुई वारित। परवाने वहीं खुद को जलाने निकल आए।
0: क्या बात है।
4: महफिल में शमा आग बनी जब हुई वारिद।
2: परवाने
4: वहीं खुद को जलाने निकल आए।
3: वाह वाह वाह।
4: देती है जहाँ बैठ के माँ हमको दुआएं।
2: वाह
3: वाह।
4: देती है जहाँ बैठ के माँ हमको दुआएं। उस घर से मुरादों के खजाने
0: निकल आए। वाह वाह वाह, क्या बात है।
2: देती है जहाँ बैठ के
4: माँ हमको दुआएं। उस घर से मुरादों के खजाने निकल आए। एक शेर देखिए, घर किसका जला ये नहीं पूछा कभी हमने।
2: वाह वाह वाह वाह।
4: घर किसका जला ये नहीं पूछा कभी हमने। देखा जो धुआं आग बुझाने निकल आए।
0: क्या बात है।
4: घर किसका जला ये नहीं पूछा कभी हमने। देखा जो धुआं आग बुझाने निकल आए। इस आस पे रहता हूँ अवैस उससे खफा मैं। इस आस पे रहता हूँ अवैस उससे खफा मैं। शायद वो किसी रोज मनाने निकल आए।

0: क्या बात,
1: वाह
0: वाह वाह,
2: एहसास पे रहता हूँ अवैस उससे खफा मैं, शायद वो किसी रोज मनाने निकल आए।
1: वाह शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया अवैस साहब। और इनकी शायरी में जो कैफियत है, जो इनके शेरों में कैफियत है, वो बहुत खूबसूरती से मुझे लगता है आप तक भी दोस्तों पहुंची होगी। हमारे साथ जो अगले शायर हैं वो हमारे उस्ताद शायर हैं अनवार आज़र साहब, बुत तराश उनके नाम से हम उनको जानते हैं। बुत तराश, शेर तराश, सुखन तराश, जी सर आपकी ये गज़ल।
1: गज़ल के चंद अशआर मुलाहज़ा फरमाएं के
3: इर्शाद,
1: एक एक करके
3: एक एक करके
1: सारे पत्थर रख देते,
3: सारे पत्थर रख लेते,
1: एक एक करके सारे पत्थर रख देते, जो भी थे इल्जाम मेरे सर रख देते।
3: क्या बात है,
1: एक एक करके सारे पत्थर रख देते थे, रख देते जो भी थे इल्जाम मेरे सर रख देते। मजबूरी ने बांध दिया था वरना हम,
3: मजबूरी
1: ने बांध दिया था, मजबूरी ने बांध दिया था वरना हम फिर औनों के काट के लश्कर रख देते। मजबूरी ने बांध दिया था वरना हम फिर औनों के काट के लश्कर रख देते। और उसने जब मीज़ान में दौलत रखी थी, तुम भी थोड़ी गैरत लाकर रख देते। उसने जब मीज़ान में दौलत रखी थी, तुम भी थोड़ी गैरत लाकर रख देते। और प्यार कहीं से थोड़ा भी जो मिल जाता, प्यार कहीं से
3: थोड़ा
1: भी जो मिल जाता, बस्ती बस्ती जाते घर घर रख देते। प्यार कहीं से थोड़ा भी जो मिल जाता, बस्ती बस्ती जाते घर घर रख देते। और छुरी बगल में लेकर घर ना चलता वो, छुरी बगल में लेकर घर ना चलता वो, आस्तीन का हम भी खंजर रख देते। छुरी बगल में लेकर घर ना चलता वो, आस्तीन का हम भी खंजर रख देते। और प्यास भला क्या बुझनी थी दिल की आज़र, प्यास भला
0: क्या
1: बुझनी थी दिल की आज़र, चाहे इसके पास समंदर रख देते। प्यास भला क्या बुझनी थी दिल की आज़र, चाहे इसके पास समंदर रख देते। एक एक करके सारे पत्थर रख देते, जो भी थे इल्जाम मेरे सर रख देते।
3: बहुत खूब,
0: क्या बात,
3: बड़ी मरस्ता गजल,
0: बहुत बहुत खूबसूरत गजल दोस्तों। अब मैं इजाजत लेके आप सभी दोस्तों से अपनी भी ये गजल आपको जी, बहुत शुक्रिया। के मतलब है कि किसी की बात में आकर जो आना हो तो मत आना।
1: वाह,
0: किसी की बात में आकर जो आना हो तो मत आना, अगर जाने का पहले से बहाना हो
3: तो मत आना।
1: खूब है,
0: किसी की बात में आकर जो आना हो तो मत आना, अगर जाने का पहले से बहाना हो तो मत आना, किसी दिन चाय पर आना तुम्हारा खैर मकदम है। किसी दिन चाय पर आना तुम्हारा खैर मकदम है, मेरे हालात पर जो रहम खाना हो तो मत आना, और मेरी आंखों की खामोशी तुम्हें बेचैन कर देगी।
3: मेरी आंखों की खामोशी तुम्हें बेचैन कर देगी,
0: मेरी आंखों की खामोशी तुम्हें बेचैन कर देगी, अगर कुछ बोलना सुनना सुनाना हो तो मत आना। और शेर है कि वो जिसके वास्ते सारे ताल्लुक ताक पर रखे, वो जिसके वास्ते सारे ताल्लुक ताक पर रखे, तुम्हारी राह में वही जमाना हो तो मत आना। और आखिरी शेर है मेरी गजल का के तवक्को पर खरे उतरे ये अब मुमकिन नहीं होगा, तवक्को पर खरे उतरे ये अब मुमकिन नहीं होगा, हमें इस बार भी जो आजमाना हो तो मत आना, किसी की बात में आकर जो आना हो तो मत आना, अगर जाने का पहले से बहाना हो
3: तो मत आना,
0: तो मत आना। बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, बहुत शुक्रिया। और आखिर में हम चलते हैं डॉक्टर जमील अजीज साहब के पास, जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, अपनी ये गजल से हमें और
3: एक दो शेर पेशे खिदमत हैं
0: जी। इरशाद,
3: उनकी नजरे करम जब इधर हो गई,
1: वाह,

0: करम जब इधर हो गई, जिंदगी अपनी उनकी नजर हो
1: नजर
0: गई।
1: हो गई।
0: उनकी नजरे करम जब इधर हो
2: वाह
0: गई,
2: वाह
0: जिंदगी अपनी उनकी नजर हो गई।
2: जी।
0: तेरी शोहरत सनम इस कदर हो
1: हो गई।
2: गई,
0: तेरी शोहरत सनम इस कदर हो गई, जा बजा कू बकू दर बदर
1: नजर
0: हो
1: हो
0: गई।
2: गया। क्या बात है, वाह वाह वाह,
1: वाह,
2: क्या
0: गजल के चंद
2: खूबसूरत
0: अशआर पेशे खिदमत हैं।
2: इरशाद इरशाद
0: मतला समाप्त फरमाइए।
2: जी इरशाद।
0: वो जो नहीं तो तन्हाई का रंग भी कितना गहरा है,
2: क्या
1: वो जो
0: वो जो
1: नहीं,
0: नहीं तो तन्हाई का रंग भी कितना गहरा है।
2: वाह
0: दीवारें खामोश हैं घर की, सन्नाटों का पहरा
1: पहरा
0: है।
2: है। वाह वाह वाह वाह,
0: दीवारें खामोश हैं घर की,
2: सन्नाटों
0: सन्नाटों
2: का
0: का
2: पहरा
0: पहरा
2: है।
0: है। दिल के जख्मों का अंदाजा कब होता है चेहरे से?
1: क्या
2: वाह वाह
1: बात
2: वाह
1: है,
2: वाह,
1: वाह
0: दिल
2: क्या बात है,
0: के जख्मों का
2: कब
0: अंदाजा
1: होता
0: कब
1: है
0: होता
1: चेहरे
0: है
1: से,
0: चेहरे से? साहिल से क्या जान सकोगे दरिया कितना
1: कितना
0: गहरा
1: गहरा है।
0: है?
1: वाह वाह वाह,
0: साहिल से क्या
1: क्या
0: जान
1: बात,
0: सकोगे
2: दरिया
0: दरिया
1: कितना
0: कितना गहरा
1: गहरा।
0: है? उसने मेरी नींदें
1: नींदें लूटी,
0: लूटी, उसने ख्वाब चुराए हैं।
2: वाह वाह
0: उसने
2: वाह,
0: मेरी
2: नींदें
0: नींदें
2: लूटी,
0: लूटी,
2: उसने
1: उसने
2: ख्वाब
1: ख्वाब
0: उसने
1: चुराए।
0: ख्वाब चुराए हैं।
2: वाह,
0: सूरज मांद है जिसके आगे, चांद सा जिसका चेहरा
1: चेहरा है।
0: है।
1: वाह
0: क्या
1: वाह वाह
0: खूबसूरती,
1: वाह
0: सूरज
2: वाह,
0: मांद है जिसके आगे,
1: चांद
0: चांद सा
1: सा
0: जिसका
1: जिसका
0: चेहरा
1: चेहरा है।
0: है। हिजर की रात न दस्तक देगी अब मेरे दरवाजे
1: दरवाजे पर
0: पर,
2: वाह,
0: हिजर की रात
1: न
0: न
1: दस्तक
0: दस्तक देगी अब
1: देगी,
0: मेरे दरवाजे पर, मेरे घर के आंगन में एक सूरज आकर ठहरा
1: ठहरा
0: है।
1: है।
0: है
1: वाह वाह
0: मेरे
1: वाह
0: घर
1: वाह,
0: के आंगन में एक सूरज
2: सूरज आकर
0: आकर ठहरा
1: ठहरा।
0: है।
2: वाह वाह,
0: गुजरे लम्हों को न पुकारो वो न पलट कर
1: आएंगे,
0: आएंगे।
2: क्या कहने, वाह,
0: गुजरे लम्हों को न
2: वो
0: पुकारो
2: ना पलट कर
0: वो न
2: आएंगे,
0: पलट कर आएंगे। वक्त किसी की कब सुनता
1: सुनता है,
0: है, वक्त तो गूंगा बहरा
1: बहरा
0: है।
1: है। क्या
0: वक्त
1: बात है,
0: किसी
1: क्या
0: की
1: बात
0: कब
1: है,
0: सुनता
1: वक्त
0: है,
1: तो गूंगा
0: वक्त
1: बहरा
0: गूंगा
1: है।
0: बहरा
1: वाह
0: है।
1: वाह वाह वाह,
0: वो जो नहीं तो तन्हाई का रंग भी कितना गहरा
1: गहरा
0: है। दीवारें खामोश हैं घर की, सन्नाटों
1: सन्नाटों
0: का
1: का पहरा
0: पहरा
1: है।
2: है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। तो दोस्तों, चलते चलते मुझे लगता है कि एक एक गज़ल और सुन लेनी चाहिए, तो मैं फिर से दावत दे रही हूँ ओवैस ओवैसी साहब को, अपनी एक गज़ल से हमें नवाजे।
3: एक गज़ल के चंद अशआर। गमों पे मुस्कुराने वाले क्या हुए,
0: गमों
3: गमों
0: पे
3: पे मुस्कुराने
0: मुस्कुराने वाले
3: वाले
0: क्या
3: क्या
0: हुए,
3: हुए,
1: क्या
3: वो रोतों को हंसाने वाले
1: हुए, अरे
3: क्या
1: क्या
3: हुए,
0: रोतों को हंसाने वाले क्या हुए।
3: गमों पे
0: वाह
3: मुस्कुराने वाले क्या
1: वाह,
3: हुए,
1: वो
3: वो
1: रोतों
3: रोतों को हंसाने वाले क्या
0: को क्या
3: हुए,
0: हुए।
3: खंडर मुसाफिरों से पूछते हैं अब,
1: खंडर
3: खंडर मुसाफिरों
0: मुसाफिरों
3: से
0: से
3: पूछते
0: पूछते
3: हैं
0: हैं
3: अब,
1: अब खंडर
3: वो
1: मुसाफिरों से
3: से
1: पूछते
3: पूछते हैं
1: हैं
3: अब,
1: अब
3: वो बस्तियां बसाने
1: बसाने
3: वाले
1: वाले
3: क्या
1: क्या हुए।
3: हुए,
2: वाह वाह वाह
3: खंडर
2: वाह,
3: मुसाफिरों से पूछते
0: पूछते
3: हैं
0: हैं
3: अब,
0: अब
3: वो
1: वो बस्तियां
3: बस्तियां
1: बसाने
3: बसाने
1: वाले
3: वाले
1: क्या
3: क्या
1: हुए।
3: हुए, अतावतों के उस अंधेर शहर में, अतावतों के उस अंधेर
1: अंधेर शहर
3: शहर में
1: में
3: चराग वो जलाने वाले
1: क्या
3: क्या
1: हुए।
3: हुए,
2: वाह वाह वाह वाह,
3: अदावतों के उस
1: अंधेर
3: अंधेर
1: शहर
3: शहर
1: में
3: में
1: चराग
3: चराग
1: वो
3: वो जलाने वाले
2: क्या
3: क्या
1: हुए।
3: हुए। और आखिरी शेर देखिए, हकीकतों के दिन लिए खड़े हैं सब, हकीकतों
0: हकीकतों
3: के
0: के
3: दिन
0: दिन
3: लिए
0: लिए
3: खड़े
0: खड़े
3: हैं
0: हैं
3: सब,
0: सब।
3: वो ख्वाब से दिखाने वाले क्या
1: वाह
3: हुए,
1: वाह
2: हुए
1: वाह
2: ख्वाब
1: वाह,
2: से दिखाने
3: हकीकतों
2: वाले,
3: के दिन
2: वाह
3: लिए खड़े हैं सब,
1: सब
3: वो ख्वाब से दिखाने
1: दिखाने
3: वाले
1: वाले
3: क्या
1: क्या
3: हुए।
1: हुए।
3: दो शेर और देख लीजिए गजल के। मतलाई चौखट पे किसी और की जाकर नहीं देखा,
0: वाह
3: चौखट
0: वाह, में किसी
3: चौखट
0: और
3: पे
0: की
3: किसी और की
0: जाकर
3: जाकर नहीं
0: नहीं
3: देखा,
0: देखा,
3: एक दर के सिवा मैंने कोई दर
1: ना
3: नहीं
1: नहीं
3: देखा,
2: देखा। वाह
0: वाह
2: वाह
0: वाह
2: वाह वाह,
3: चौखट पे किसी और की जाकर
2: जाकर
3: नहीं
2: नहीं
3: देखा,
2: देखा,
3: एक दर के सिवा मैंने कोई दर नहीं
2: क्या
3: देखा।
2: कहने,
3: और शेर देखिए, अहबाब के फूलों पे नजर मेरी रही
1: यही
3: है,
1: है। वाह वाह वाह,
3: अहबाब
1: अहबाब
3: के
1: के
3: फूलों
1: फूलों
3: पे नजर
0: नजर
3: मेरी
0: मेरी
3: रही
0: रही
3: है,
0: है।
3: किस समत से आया कोई पत्थर नहीं
1: नहीं
3: देखा,
1: देखा।
2: क्या
1: वाह वाह
2: कहने,
1: वाह,
2: वाह
1: किस समत से
2: अहबाब
1: आया
2: किस
1: कोई
2: समत से
1: पत्थर,
0: किस
2: आया
0: समत से आया
1: आया
0: कोई
1: कोई
0: पत्थर
1: पत्थर
0: नजर
1: नहीं
0: नहीं
1: देखा,
0: देखा।
1: पत्थर नहीं
3: वो
1: देखा।
3: एक शेर है कि कुछ ऐसे तेरे हिजर के दिन काट रहा हूँ,
0: कुछ
3: कुछ
0: ऐसे
3: ऐसे
0: तेरे
3: तेरे
0: हिजर
3: हिजर
0: के
3: के
0: दिन
3: दिन काट
0: काट
3: रहा
0: रहा
3: हूँ,
0: हूँ,
3: जैसे कि कभी मैंने तेरा घर
1: घर
3: नहीं
1: नहीं देखा।
2: हाय
1: हाय
2: हाय हाय हाय, क्या कहने,
3: कुछ
1: कुछ
3: ऐसे
1: ऐसे
3: तेरे
1: तेरे
3: हिजर के दिन काट
1: काट
3: रहा
1: रहा हूँ,
3: हूँ, जैसे कि कभी मैंने तेरा

0: घर नहीं देखा। वो आखिरी शेर ये सुन के अवैस उसकी शरारत पे हंसा मैं, ये सुन के अवैस
1: अवैस
0: उसकी शरारत
1: शरारत पे
0: पे हंसा
1: हंसा
0: मैं,
1: मैं।
0: मछली ने कहा मैंने समंदर नहीं देखा।
1: क्या बात है, क्या बात
0: ये
1: है।
0: सुन के अवैस उसकी शरारत पे हंसा मैं, मछली ने कहा मैंने समंदर नहीं देखा। बहुत शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया आपका। और अब अनवार आज़र साहब से गुजारिश है कि अपनी एक और गज़ल हमें सुनाए।
2: मतलब देखिए कि
1: जी
2: दीवारों पर लिखना हमने छोड़ दिया।
1: वाह।
2: वाह।

0: शेर किसी
1: पर
0: पर कहना हमने छोड़ दिया, जो भी आदत थी सबकी सब वैसी है, जो भी आदत थी
2: सबकी
0: सब वैसी है, छुप छुप कर हाँ मिलना हमने छोड़ दिया।
3: क्या बात है, क्या बात है।
0: जो भी आदत थी सबकी सब वैसी है, छुप छुप कर हाँ मिलना
1: हमने
0: छोड़ दिया। रसमन सा बस थोड़ा झूठ मिलाते हैं, रसमन सा बस थोड़ा झूठ मिलाते हैं, बेपर का वो उड़ना हमने छोड़ दिया।
3: क्या बात,
0: रसमन सा बस थोड़ा झूठ मिलाते हैं, बेपर का वो उड़ना हमने छोड़ दिया। एक ना एक मंजिल आंखों में होती है, इतना एक मंजिल आंखों में होती है, बेमकसद का जीना हमने छोड़ दिया।
1: क्या बात है,
0: इतना एक मंजिल आंखों में होती है, इतना एक मंजिल आंखों में होती है, बेमकसद का जीना हमने छोड़ दिया। और सीधी सी आसान डगर अपनाते हैं,
1: सीधी सी आसान
0: डगर अपनाते हैं, मुश्किल राहें चलना हमने छोड़ दिया। और दिल वालों से शायद ही अब मिलना हो,
1: दिल वालों से
0: शायद ही अब मिलना हो, गलियों गलियों फिरना हमने छोड़ दिया। दिल वालों से शायद ही अब मिलना हो, गलियों गलियों फिरना हमने छोड़ दिया। और चांद वो बदली से निकले या छुप जाए,
1: चांद वो बदली
0: से निकले या छुप जाए, आदर छत पर जाना हमने छोड़ दिया।
3: छत पर जाना, क्या बात है।
0: चांद वो बदली से निकले या छुप जाए, आदर छत पर जाना हमने छोड़ दिया, दीवारों पर लिखना हमने छोड़ दिया, शेर किसी पे कहना हमने छोड़ दिया।
1: क्या बात है, बहुत
3: खूब। क्या कहने, बहुत खूब गजल। अब मैं अपनी ये गजल एक आप सबके सामने
1: अता कीजिए
3: जी। मतलब देखिए कि किसी सूरत कोई सागर निकालो,
1: किसी सूरत कोई सागर निकालो,
3: किसी सूरत कोई सागर निकालो, हमारी आंख का बंजर निकालो। किसी सूरत कोई सागर निकालो, हमारी आंख का बंजर निकालो, यकीन फिर से हुआ जाता है तुम पर,
1: यकीन फिर से हुआ जाता है तुम पर,
3: यकीन फिर से हुआ जाता है तुम पर, कोई तो आके मेरा डर निकालो। यकीन फिर से हुआ जाता है तुम पर, कोई तो आके मेरा डर निकालो, तुम्हारी राह के गुल बोलते हैं,
1: तुम्हारी
3: राह के गुल बोलते हैं, हमारी राह के पत्थर निकालो,
1: हमारी राह।
3: और शेर देखिएगा कि सलीके से जो दुनिया देखनी है, सलीके से जो दुनिया देखनी है, तो अपनी आंख का कंकर निकालो। सलीके से जो दुनिया देखनी है, तो अपनी आंख का कंकर निकालो, ये देखो आसमां से जा लगा है,
1: ये देखो
3: आसमां से जा लगा है, तुम्हें किसने कहा था सर निकालो। ये देखो आसमां से जा लगा है, तुम्हें किसने कहा था सर निकालो, कहानी से तो रुखसत कर चुके हो,
1: कहानी से तो रुखसत कर चुके हो,
3: अब अपने दिल से भी हंस कर निकालो। कहानी से तो रुखसत कर चुके हो, अब अपने दिल से भी हंस कर निकालो। और आखिरी शेर के मोहब्बत करके हमने देख ली है, मोहब्बत करके हमने देख ली है, चलो छोड़ो भी अब चौसर निकालो। मोहब्बत करके हमने देख ली है, चलो छोड़ो भी अब चौसर निकालो, किसी सूरत कोई सागर निकालो, हमारी आंख का बंजर निकालो। बहुत शुक्रिया दोस्तों, और इस प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में हम पहुंच गए हैं। तो एक बार और मैं डॉक्टर जमील अजीज साहब से मैं दरख्वास्त करती हूं कि अपनी एक और गजल अता करें।
1: मतलब पेश
3: जी, इरशाद।
1: बुझ गया किसकी उम्मीदों का दिया जलता हुआ, बुझ गया किसकी उम्मीदों का दिया जलता हुआ, एक सन्नाटा है सारे शहर में छाया हुआ, एक फसाना हो गया मंसूब मेरे नाम से, एक फसाना हो गया मंसूब मेरे नाम से, खूब उनके हुस्ने दिल अफरोज का चर्चा हुआ।
3: क्या बात है,
1: खूब उनके हुस्ने दिल अफरोज का चर्चा हुआ, चल दिए महफिल से चुपके से वो आने पर मेरे, चल दिए महफिल से चुपके से वो आने पर मेरे, आबरू रख ली सितम घर ने चलो अच्छा हुआ, आबरू रख ली सितम घर ने चलो अच्छा हुआ, किस भरोसे

0: की बिना रखे कोई,
1: वाह
0: किस भरोसे
1: वाह वाह,
0: पर
1: नशे
0: नशे
1: मयूर
0: मन
1: की बिना
0: की
1: रखे
0: बिना
1: कोई।
0: रखे कोई, एक पल में जब उजड़ जाता है घर बसता
1: बसता हुआ। हाय हाय,
0: हुआ,
1: क्या
0: एक
1: कहूँ,
0: पल में जब उजड़ जाता
1: मतलब
0: है घर
1: बसता
0: बसता
1: हुआ।
0: हुआ,
1: वाह वाह,
0: देखता रहता हूँ हैरानी में ता हद्दे नजर,
1: क्या कहने, ता
0: देखता
1: हद्दे
0: रहता हूँ हैरानी में ता
1: हद्दे
0: हद्दे नजर,
1: नजर
0: जाके रुकता है कहाँ सैलाबे गम बहता
1: बहता हुआ।
0: हुआ,
1: वाह वाह वाह,
0: जाके रुकता है कहाँ सैलाबे
1: सैलाबे
0: गम
1: गम
0: बहता
1: बहता हुआ।
0: हुआ, हादसे भी दम बखुद हैं मेरी जुरत पर अजीज,
1: क्या
0: हादसे भी
1: कहने,
0: दम बखुद हैं मेरी जुरत पर अजीज, देख कर पहम मुझे हर हाल में हंसता
1: हंसता हुआ,
0: हुआ,
1: खूब है,
0: देख
1: कहने खूब है,
0: कर पहम मुझे हर
1: हर हाल
0: हाल
1: में
0: में
1: हंसता
0: हंसता
1: हुआ।
0: हुआ,
1: वाह जी,
0: बुझ गया किसकी उम्मीदों का दिया जलता
1: जलता हुआ
0: हुआ, एक
1: एक
0: सन्नाटा
1: सन्नाटा
0: है सारे शहर
1: शहर
0: में
1: में
0: छाया
1: छाया हुआ,
0: हुआ।
1: क्या कहने हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का स्टूडियो मुशायरा। ऑल इंडिया रेडियो की जानिब से हम यहाँ इकट्ठे हुए थे, तो आप सबका, दोस्तों का बहुत शुक्रिया। उर्दू ऑल इंडिया रेडियो के सारे सामईन का बहुत बहुत शुक्रिया।
2: हुणे तुसीं उर्दू मुशायरा सुन रहे सी पागलन वाले शायर सन डॉक्टर जमीलुर रहमान, मोहम्मद उवैसी, मोहम्मद अनवर आज़ार ते रेनू नैयर। आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। लो हुण समात परमाओ चंद गज़लां। सब तो पहला मनहर उदास दी आवाज़ च ए गज़ल।

0: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਾਈ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਰਵੀ ਕਪੂਰ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य

0: क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लाओ जी, जीरुक सौ इक्यासी तेई बताली एक सौ इकहत्तर। और अगर तुसी अपना संदेश, अपनी फरमायश सानू वट्सएप राही भिजवाना चाहते हो, साडा नंबर नोट करो जी 9465536077। अगर तुसी मैसेज इंडिया के बाहरों कर रहे हो तो कंट्री कोड +91 यानी 0091 लगाना ना भुलना जी। सानू उड़ीक रहेगी तुहाडे प्यारे प्यारे वट्सएप मैसेजिज की और नाल ही तुहाडे फोन कॉल्स की। लो जी, गलबात दौरान ही प्रोग्राम के पहले कॉलर सा जुड़ चुके हैं। आओ देखिए कौन ने, किहड़ी जगह तो तशरीफ लिया रहे हैं और किस गीत की फरमाइश कर रहे हैं। हैलो,
1: हैलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं? जनक राज जी, जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात। की हाल चाल है? थोड़ी आवाज कट रही, थोड़ा जा ओपन च बाहर आ जाओ, खुले जा जाओगे? मैनु सुन पा रहे हो? हाँ जी, हूँ ठीक है। जनक राज जी, अपने बारे कोई दसो, की काम कर करदे हो?
1: सर जी, मेरा कमरा है जी, कमरा वगैरह बना लेंगे।
0: वाह जी वाह, तो मिठाइयां भी बना लेंगे हो?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: वाह जी वाह, लड्डू चमचम रसगुल्ले बर्फी जो मर्जी बनवा लिए बना दोगे?
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: ओ वाह जी वाह, मतलब तुसी लोकां दी जिंदगी च मिठास पैदा करदे हो।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: बहुत खुशी हुई तुहाडे नाल गलबात करके। तो अज तुहाडी कॉल लगी है, साडे सारे परिवार दे जी तुहाडी गलबात सुन रहे ने। अज तुसी उहनां नूं किहड़ा गीत सुनवाओगे? जिन्नी भी लाइन्स हैगियां सारियां ओपन ने, पर गल है कि गल सिर्फ इक्को लाइन ते होनी हुंदी है। मैं मंदा इस गल नूं कि लाइन नूं कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है, पर तुहाडी अज लॉटरी कह लो या तुहाडी मेहनत सफल होई, ते अज किहड़ा गीत सुनवा रहे हो सानूं? जनक राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा प्रोग्राम शिरकत करन लई ते सानू कॉल करन लई। असीं उम्मीद करदे हां सानू तुसीं इसी तरह कॉल करदे रहोगे और प्रोग्राम दा हिस्सा बनदे रहोगे। तुहाडी पसंद दा गीत तुहाडे तक पहुंच रहा जी।

0: कृणाल। हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं
1: जी,
0: जी?
1: नमस्कार जी। सुखबीर
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, किस जगह तो?
1: सिंह छाजली बोलता मेरे संगरूर को। ठीक
0: स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। की हाल चाल ने?
1: ठाक जी, बढ़िया। तो दा भी स्वागत है, मोस्ट वेलकम। हाउ आर यू? काम
0: अब अपने पर दसो की कम कर कर देओ।
1: कर सर, मेहनत तो मजदूरी करते हैं, शहर भी जाने पेंडे पर भी कम
0: वेरी
1: कई थानू
0: गुड,
1: चलता।
0: वेरी गुड, वेरी गुड। देखो जी, गुरदास मान होना गीत है भी, रोटी हक दे खाइए, फिर भावें जो मर्जी करिए, है ना जी?
1: हाँ जी, काम करना पड़ता जी, महंगाई बहुत
0: बहुत है जी, बहुत है। अच्छी तो कॉल लगी, बड़ी खुशी की गल है। तो कहड़ा गीत सुनवाओगे सारे?
1: है। टुकड़े टुकड़े डाल रहा हूँ।
0: दिल टुकड़े टुकड़े।
1: हाँ जी
0: मेरा ख्याल
1: वो,
0: है मनमोहन वारिस जी का गीत है।
1: हाँ जी हाँ, डाल रहा।
0: चलो ठीक है जी, कॉल करने धन्यवाद। थोड़ी पसंद का गीत जरूर प्ले करांगे। पहला असी कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस असी शामिल करांगे प्रोग्राम विच, जिहड़े साडे रब वर्गे सोता थानू भेजे जा रहे ने। और पहला जिहड़ा असी हुण व्हाट्सएप शामिल करन जा रहे हां जी, खुशनुमा माहौल सजी है। इन्ना प्यारा मैसेज भेज रहे ने गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन दिल्ली तो। स्वागत है जी मीता साहब, तुहाडे अपने प्रोग्राम सौगात विच। प्रोग्राम पेश करने वाले नूं प्यार भरी नमस्कार। इस तरह लिख के भेजे है गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवां शहर तो सुरिंदर संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, प्रतीक्षा ते मैक्स। कनेरा महला पटियाला तो मैसेज भेज रहे ने मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता। ऐ सुनना चाहते ने शहरी मान का कोई गीत, जरूर जी जरूर प्ले करांगे। बस प्रोग्राम दे नाल बने रहो, कुछ समा दिओ। बैसकिट नाभा तो सोमदत्त, ज्योति राणी कैरव, गुरमंत। ऐ सुनना चाहते ने हरजीत हरमन का गीत, बस हुणे ही प्ले किया। उम्मीद करदा कि तुसीं सुनिया होएगा, आनंद माणिया होएगा जी। मैसेज लई बहुत बहुत शुक्रिया। मंडी हरजी राम मलोड़ तो नथू राम शर्मा, ललित शर्मा, इंदराज शर्मा, सुरेश शर्मा, कहिंदे कोई भी पंजाबी गीत सुनवा दिओ। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया तुहाडा जी। प्रोग्राम में शिरकत करन लई, हाजरी लगवाउण दे लई धन्नवाद तुहाडा। पटेल नगर मलोड तो रमेश कुमार जजोरिया, गीता राणी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू ते गुड्डू। पिंड चगुड़ी जिला यमुनानगर तो रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन, मनकीरत ते मनराज। वाजवा बहुत प्यारा मैसेज है तुहाडा जी। नमस्कार जी, हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हमारे भी मैसेज को शामिल करो, कोई भी गुरदास मान का सॉन्ग। धन्यवाद। बिल्कुल जी, जरूर प्ले करांगे। तुसी इन्ना ज़्यादा रंगीला, इन्ना ज़्यादा प्यारा मैसेज भेजा, तो साडा भी फर्ज बनता है कि तुहाडी पसंद का गीत प्ले करिए। प्रोग्राम दे नाल इस तरह बने रहो, तुहाडी पसंद का गीत जरूर जरूर आएगा। लेकिन पहला असीं सुनांगे मनमोहन वारिस का यह गीत दिल टुकड़े टुकड़े, जिहदी फरमाइश सानू छाजली साहब ने की है जी। लो जी, पेश है मनमोहन वारिस का गीत।

0: बस
1: कितार,
0: बस पूछो ना।
1: है
0: बिल्कुल
1: ना जी?
0: बिल्कुल।
1: ते कटारे साहब, अपने मेरे को थोड़ा दसोगे की काम कर करते हो?
0: मैं पेंट की सप्लाई करता जी, कारा दे पेंट दी।
1: अच्छा जी,
0: कुछ 10 को मंडियां, 10-12 मंडियां है जी मेरे
1: बोले
0: को।
1: बोले बोले, 10-12 मंडियां टैकल करते हो?
0: हाँ जी हाँ जी। नहीं
1: मतलब वड्डे व्यापारी तुसी मारे हुए हैं।
0: नहीं छोटा मतलब गिरता
1: चलो ठीक है,
0: व्यापारी है जी, कब का
1: आज
0: सही गल।
1: केड़ा गीत सारे परिवार को सुना रहे हो, आकाशवाणी परिवार को? केड़ा
0: जगमोहन
1: गीत?
0: कौर जी नहीं लुकते सजना नैन
1: नैन
0: कुमारे।
1: कुवारे। देखो गीत तो बड़ा प्यारा, पर एक गल ईमानदारी ने दसना कि हुण घुंड दा जमाना रहा तो नहीं? वैसे नहीं ना रहा जी?
0: मैनू बड़ा मजा आता सुन के
1: अच्छा, ते गुरदास मान साहब का गीत सुन रहे? घुंड भी गए ते घुंड वालियां भी गईयां, कन्ना विच कोकरू दे वालियां भी गईयां, चल पे बलैती बाणे
0: ना बैठा सी किसी को मेडिकल पे,
1: जी।
0: उत्थे एक बंदा आया गुरदास मान दा फैन सीगा।
1: जी,
0: ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਡ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਘੁੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ,
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
0: ਹੁਣ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ।
1: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਭੂਸ਼ਣ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

चापियां तख्त हजारा कोई छड़ दे हुंदी है जवान जदों हीर कोई बेलियां च उदों कोई रांझा हिक कढ दे इहने सारी करामात नहीं कराउण वाले बेरी अखवाउणगे बेचारे बे कुंड विच आ

कोल कुमाई लालना गुरमंदीना, सुन सबद तुम्हारा मेरा मन पीना। प्रभु दा शब्द ब्रह्म है, शब्द तुनात्मक भी है ते वर्णात्मक भी, शब्द गुरु है ऐसा बाबा नानक जी ने फरमाया सी। शब्द गुरु सुरत तुन चेला, जदों इंसान दी सुरत प्रभु दे शब्द विच तुर अंदर तक प्रवेश कर जांदी है, अर्थात उस दी सुरत अते मन प्रभु दे शब्द दे अनुसारी हो जांदे ने, तां प्राप्ति हो जांदी है। अज्ञानता दा हनेरा मनफी हो जांदा है, शब्द दे नाल ज्ञान दा प्रकाश हो जांदा है, इंज महसूस हुंदा है। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बिनास, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास। दरअसल सच्चा गुरु दीपक गुरु है, गुरु दा शब्द ऐसा दीपक है जिस दे उजाले दे नाल अज्ञानता दा हनेरा बिनस जांदा है, मन मंदर दे द्वार खुल जांदे ने, मानो रत्ना दी कोठड़ी खुल जांदी है ते अनूप प्रभु दे दर्शन दीदार हो जांदे ने। ऐसा राग बिलावल महला पंजवां चौपदे दुपदे कर सतवां सिरलेख अधीन उचारी गई बाणी च फरमाया गया है। सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिनस्यो अंधकार ते मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। सरवण करदे हां डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: सतगुर सबद उजारो दीपा, बिन सेव अंधकार ते मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। इस शब्द का गायन किया सी डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। साहेब श्री गुरु नानक देव जी राग गौड़ी च उचारी गई एक रचना च गौड़ी महला पहला दक्षिणी सिरलेख अधीन उचारे गए शब्द च फरमाउंदे ने कि सच्चे गुरु दी यही सिख्या है, अकाल पुरख पासों सच्चे नाम दी दात प्राप्त करके तन ते मन सीतल हो जांदे ने, ते मन इस तरह निर्लेप हो जांदा है जिस तरह जल दे विच कमल निर्लेप रहिंदा है। प्रभु दे शब्द विच रत्या मन ईख भाव गन्ने दे रस दी न्याई मिठा हो जांदा है। बाबा नानक जी फरमाउंदे ने, सबद रते मीठे रस ईख। सुनदे आ कमलजीत कौर होरां पासों ए वार्ता।
1: सबद तो भाव गुरु द्वारा उच्चारण कीता सबद जा बाणी, रते भाव प्रेम वाले। बाणी ओ है जो असी मूहों बोलदे हाँ, बोल के अपनिया भावनावां नूं दसदे हाँ। गुरबाणी गुरु दी है, गुरु दा बोल है, गुरु मिठ बोलड़ा है ते उस दी बाणी मिठी है। सारे गुना नाल भरपूर आत्मक जीवन देन वाला परमात्मा किसे दी काल कमाई नूं बिरथी नहीं जान देंदा, मेहनत दी कदर करदा है। इसे लई किसे नाल कूड़ा बोलदा ही नहीं, सब दियां भावनावां दी कदर करदा है, मिठ बोलड़ा है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा। गुरु दी सच्ची सिख्या प्राप्त करके शांत मन ते शरीर सदा थिर रहन वाले प्रभु नू पछाण लैंदे हन। वाहिगुरु नाल इस तरह प्रीत पै जांदी है जिवें कमल दी पानी नाल है। परमात्मा दे रंग विच रंग के मिठे गुण गान नाल हर थां आदर मिलदा है, ढोई मिलदी है। मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू, मीठे हर गुण गाओ, सच्चे सेती रतियां मिलिया निथावें थाऊ। मिठास अर्थात निमरता सारे गुना अते चंगियाईयां दा तत् है। जुबान दी मिठास दा गुण धारण करन लई निर्माणता अते प्यार गुना ते चंगियाईयां दा तत् है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत्। परमात्मा ने अपने रहन लई मन नूं सोना घर बनाया है। प्रभु प्रेम दे रंग विच रंगे मनुख दी गुरु दी किरपा नाल परमात्मा नाल सुरत जुड़न ते जीवन दाते नाल मिलाप होन ते अपने आप ही दिन रात अंदरों परमात्मा दा नाम उचरदा रहंदा है। कुराहे प्या चंचल गवार लोभी मन परमात्मा दी बख्शिश नाल गुरबाणी दे मिठे बोलना राही आत्मक जीवन देन वाली सिफत सलाह दी बाणी नाल जुड़ जांदा है। मिठा बोले अमृत बाणी आंदिन हर गुण गाओ, निज कर वासा सदा सोहदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ। जुबान नाल बुरे बोल बोलन नाल सालां दी बनी हुई प्रीत टुट जांदी है। रसना नाल पड़ी बाणी कन्ना विच पैन नाल जेड़े फिक्के बोल अंदर दी प्रीत नूं तोड़ गए सन अमृत बई बोलना नूं जपन नाल जुड़ जांदे हन। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परमगत मेरी, जलन बुझी सीतल होए मनुआ सतगुर का।

0: दर्शन पाए जियो। शक्कर, खंड, मिश्री, गुड़, शहद, ये सारियां चीज़ां मिठियां हन, पर असल मिठास वो है जेड़ी परमात्मा नाल जोड़दी है। जिवें फरीद जी अपनी माता द्वारा सराहने हेठ रखी गई शक्कर सदका परमात्मा नाल जुड़ गए। फरीदा सक्कर खंड निवात गुड़, माखियों मांझा दुध, सबे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। प्रभु नाम दे मिठे रस की प्राप्ति आत्मिक अनुभव हन। गुरु अमरदास जी आनंद साहब विच जिक्र करते हैं कि होर रसा विच रस के प्यास नहीं बुझेगी, तृप्ति केवल हर रस नाल ही आवेगी, ते जदों हर रस प्राप्त हो जावे ता होर सब रस विसर जाते हैं। ए रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होर ते कितै जिचर हर रस पल्ले ना पाए। गुरु की कृपा नाल मन निर्मल होने ते अंदरों तृष्णा मुक जाती है, आपा प्रधान नहीं रहिंदा। दिन रात वाहिगुरु दे गुण गाउंदिया गुर शब्द राही ऐसी अवस्था की प्राप्ति हुंदी है कि शब्द तो बिना कुछ चंगा ही नहीं लगता। प्रभु का नाम ही मिठा ते होर रसा विच्चों श्रेष्ठ लगता है। नानक नाम महारस मिठा, तृष्णा नाम निवारी। गुरु की कृपा तो बिना नाम रस की प्राप्ति नहीं हुंदी। जिस ते प्रभु प्रसन्न हुंदा है उसनों ही प्राप्त हुंदी है। कृपा की दृष्टि विच आन के जिस ते भागा विच लिख दिंदा है उसनों नाम रस तो बिना बाकी सब वस्तुआं कौड़ियां लगदियां हन। सबे वस्तु कौड़ियां, सच्चे नाओ मिठा, साध आया तिन हरजना, चख साधी डिठा। परमात्मा दे नाम दा वपार स्वादला वपार है। भगती दे वपार तो नफा वद्दा रहिंदा है। प्रभु दे नाम तो बिना कोई होर ऐसा सौदा नहीं जो सदा लाभ ही देवे। नाम वपार दे लेखे दी परख करन वाले परमात्मा दी मेर नाल नाम वखर हासिल कर लैंदे हन। प्रभु दा नाम सदा थिर रहन वाला ते बहुत ही मिठे स्वाद वाला पदार्थ है जो गुरु दी राही ही मिलदा है। नाम का वपार मिठा, भगत लाहा अन दिनों, तिस बाज वखर कोई ना सूझै, नाम लेवो खिन खिनो। परख लेखा नदर साची, करम पूरे पाया, नानक नाम महारस मीठा, गुर पूरे सच पाया।
1: सबद रते मीठे रस ईख। ये वार्ता सुना रहे सन कमलजीत कौर। राग सारंग विच उचारे गए शब्द विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने कि मेरे मन नूं तां गुरु का शब्द अत मिठा लगदा है। ओ इस करके क्योंकि गुरु के शब्द राही गुरु की कृपा वरदी है। जीव रूप स्त्री दे पाग खुल जांदे ने, ज्ञान रूपी चानण दे नाल कट अंतर ही अकाल पुरख प्रभु दे दर्शन दीदार हो जांदे ने। फरमान है मेरा मन शब्द लगो गुर मीठा, खुल्यो करम पयो परगासा, कट कट हर हर डीठा। सरवण करदे हां भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

मेरा मन शब्द लगो गुर मीठा, खुल्यो करम पयो परगासा, कटकट हर हर डीठा। इस शब्द गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

माया मत कहां लो गारो, शतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात रिदे ना बिचारो, रथ ना सो न गज सिंघासन, छिन में त्यागत नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दृष्ट निहारो, कोट न ओढ़ न कोस न छोटा, करत विकार दोहु कर चारो, मित्र न पुत्र कर्तर साजन साख, उल्टत जात बिरह की शारो।

मनिंदर खोज ते गोरख तरन गगन आवत हुन तावत सिद्ध मनुख देव अरदान एक तिल ताको मर्म न पावत प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्श समावत जिसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूर सिमर सुखदा।

सर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी इशनान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रभ तारी साजन मीत सखा हर बंद जी तान प्रभ प्राण उदारी ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बल हो।

नीर ना साक्ष बोर चले हर पंथ पग, नानक रोग दोख अग मोह सिदे हर नाम खग। उद्यम कर लागे बहु भाती, बिचरे अनेक साहतर बहु खटुआ, भसम लगाए तीर्थ बहु भ्रमते, सूखम देह बंदे बहु जटुआ, बिन हर भजन सगल दुख पावत, ज्यों प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ, पूजा चक्र करत सोम पाका, अनेक भांत थाटे कर थटुआ।

रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो। कलयुग परमाने नानक गुर।

तप तप लोह हाथ मरोरा बावल होई सो सहलो मन मह किया रोस मुझे अवगन सहनाही दोस तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरा बावल होई सो सहलोरा तस मन मह किया रोस मुझे अवगन सहनाही दोस तै साहिब की मैं सार ना जानी जोबन खोए पाछ पछतानी

कर कृपा प्रभु साध संग मिले जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेले वाट हमारे खरी उड़ीनी खन्या होत

पंथ समार सवेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरा, बावल होई सो सहलोरा। तै सह मन मह किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोष।

나는 사적한다. 시링 하름만다르 사헤브 지비케 딴나 사트구루 시리구루 가람타 사헤브 지요 마하라즈 아파디 데하주라 शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास पुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह दियां जना जना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जी आओ सरबत साध संगत नूं अपने दारां घरां सिखी सिद्धक भरोसा नाम दान बख्शना।

देगा हाजर है, दारू परवान होवे परवान होया प्रसाद, संगत विच बरताउन दी आग्या बख्शां, सुख होवे नाम चित आवे, सेखा पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद हो।